छात्र सभी बेहतरीन इसलिए मियां मिट्ठू हम अपने इसलिए बन रहे हैं क्योंकि हम इस शो में आपसे बात करते हैं आपकी जिंदगी की, आप जो पाना चाहते हैं उसकी और जो आपके लिए जरूरी है उसकी भी। और इसके साथ ही साथ हम इस शो में प्ले करते हैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन मॉर्निंग नंबर्स। तो चलिए, जब इतना प्यारा इतना खास शो है तो भला देर किस बात की है। अगले ट्रैक के साथ बढ़ते हैं सफर में आगे। K+92 रेडियो ब्रह्मवाणी सुनते रहिए सताक्षी के साथ। इट हैपेंस।

वेलकम बैक रेडियो प्रस्वानी पर सताक्षी के साथ आप एंजॉय कर रहे हैं आपका अपना ब्रेकफास्ट शो इट हैपेंस। दोस्तों आगे बढ़ना है, ढेर सारी बातें भी आपके साथ करनी है, लेकिन फिलहाल आगे बढ़ेंगे आज के उस विश के साथ, उस खास सेगमेंट के साथ जिसमें हम उन्हें विश करते हैं जिनके लिए आज का दिन खास है। सो जिनका आज है हैप्पी बर्थडे, उन सबको उनके बर्थडे की ढेरों ढेर शुभकामनाएं। जी हाँ, हम यही तो चाहते हैं कि आपकी सारी जिंदगी खुशियों से भरी रहे, आबाद रहे, और यही हमारी विश भी है आज आपके लिए, और आपके लिए हमारा गिफ्ट भी है। जिनके लिए आज का दिन स्पेशल और खास इसलिए है क्योंकि आज उनका जीवन साथी उन्हें मिला था। ये साथ जो है, सात जन्मों का ये आज के दिन ही जो है वो बंधा था। सो आपको आज के दिन की ढेरों ढेर शुभकामनाएं। आप यूं ही जिंदगी के कदमों से कदम मिलाकर चलते रहें और एक साथ चलते रहें। इसी विश के साथ अब हम विश करेंगे उन्हें भी जिनके लिए है आज का दिन स्पेशल और खास। सो आपको आज के दिन की ढेरों ढेर शुभकामनाएं। यकीन मानिए, आप जो भी चाहते हैं वो जरूर मुकम्मल होगा क्योंकि आपकी ख्वाहिश सच्ची और साफ दिल की है। आइए इस अगले ट्रैक के साथ बढ़ते हैं सफर में आगे। स्टे ट्यून्ड, रेडियो प्रस्वानी, सुनते रहिए हमारे साथ इट हैपेंस।

सो वेलकम बैक इट हैपेंस एंजॉय कर रहे हैं आप सताक्षी के साथ रेडियो प्रस्वानी 1701 AM पर। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस खास और खूबसूरत सफर में इस अगले ट्रैक के इस पार। यू नो, जब भी हम सोचते हैं कि हमें एक फ्रेश स्टार्ट करना है, एक नया स्टार्ट करना है, तो हम सोचते हैं कि यार जगह भी नई होनी चाहिए, है ना, क्योंकि भाई नई शुरुआत नई जगह से हो तो क्या बात है। लेकिन देखा जाए तो नई शुरुआत के लिए नई जगह की नहीं बल्कि नए माइंडसेट की जरूरत होती है। एक नया तरीका, एक नया अंदाज और एक नई जर्नी जब साथ मिलकर शुरू होते हैं तो डेफिनेटली जिंदगी बहुत सारी नई चीजों से होकर गुजरती है। वहीं अगर आप नई जगह की तलाश कर रहे हैं अपने जिंदगी को या अपने गोल को रिस्टार्ट करने के लिए, तो फिर सिर्फ और सिर्फ जगह ही बदलेगी। आप में, आपके गोल में, आपके माइंडसेट में कोई चेंज नहीं आएगा। और जब तक माइंड को रीसेट नहीं करेंगे, एक नए सिरे से शुरुआत नहीं करेंगे, तब तक फिर आप लाइफ को बेटर नहीं बना सकते और अपने गोल्स को उसी ढर्रे पर चलकर, पुराने ढर्रों पर चलकर आप अचीव भी नहीं कर सकते। चलिए फिलहाल इसी बात के साथ आपको आगे लेकर चलती हूँ। एक और ट्रैक सुनिए मेरे साथ और सुनते रहिए इट हैपेंस ओनली ऑन रेडियो प्रस्वानी 1701 AM।

जी हाँ, इट हैपेंस। आप एंजॉय कर रहे हैं सताक्षी के साथ रेडियो पुरस्वानी 1701 एम पर, और इस मॉर्निंग हो रही है आपके साथ कुछ बेहतरीन बातें हमारी। यूं तो सुबह आपके लिए बहुत कुछ लेकर आती होगी, लेकिन वो सारी चीजें जो आप खुद अपने लिए प्लान करते हैं वही आपकी सुबह की सबसे बेहतरीन प्लानिंग होती है। यू नो, वो सुबह की अपने साथ पी गई एक कप कॉफी भी हो सकती है, अपने लिए बनाया गया बढ़िया सा डिटॉक्स वाटर भी हो सकता है, और अपने लिए एक बढ़िया सा ब्रेकफास्ट तैयार करना भी हो सकता है, या फिर रेडियो पर बैठकर 2 मिनट शांति से सताक्षी को सुनना भी हो सकता है, अपने साथ की गई एक्सरसाइज भी हो सकती है। वो कुछ भी जो आप खुद के लिए इस मॉर्निंग प्लान करते हैं उसके साथ आपकी मॉर्निंग और भी बेहतरीन हो जाती है। सो क्या है इस मॉर्निंग आपकी अपने लिए प्लानिंग, मेरे साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और फिलहाल चलिए आपको अभी आगे लेकर चलती हूँ एक और गाने के साथ, इसे सुनिए और मेरे साथ सुनते रहिए। इट हैपेंस ओनली ऑन रेडियो पुरस्वानी 1701।

जी हाँ, इट हैपेंस एंजॉय कर रहे हैं सताक्षी के साथ दोस्तों रेडियो प्रस्वानी पर। और इट हैपेंस में चलिए आपको आगे लेकर चलते हैं आज के गानों के हैट्रिक के लास्ट ट्रैक के साथ। के प्लस इंटू रेडियो प्रस्वानी, मेरे साथ एंजॉय करते रहिए इट हैपेंस।

जी हाँ, इट हैपेंस पर सताक्षी के साथ हैं आप और एंजॉय कर रहे हैं मेरे साथ इस मॉर्निंग कुछ बहुत ही बेहतरीन और प्यारे से गाने। देखिए, जिंदगी बहुत सारी चीजों को आपको सिखाती है और बहुत सारी चीजों से भरी हुई है, लेकिन अगर आप मुझसे पूछें कि जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या हैं, तो मुझे लगता है कि जिंदगी पूरी तरह से डिपेंड है भूलने पर, जो किया है, जो गलत किया है इनफैक्ट उसके लिए थोड़ा सा पछताने पर, और लाइफ ने जो आपको लेसन दिए हैं उनको याद रखने पर। लेकिन हम करते बिल्कुल इसका उल्टा है, अपनी गलतियों को हम कभी रिग्रेट करते नहीं, उस पर ध्यान देते नहीं है, चीजें हम भूलते नहीं हैं, और लाइफ के लेसन तो याद रखना, जैसे लगता है कि हमें अपनी गलतियां याद रखने के लिए कहा जा रहा है। तो भाई, इसीलिए लाइफ की इतनी सारी प्रॉब्लम से हम और आप घिरे रहते हैं। ख्याल रखिए ताकि जिंदगी बेहतरीन हो सके। और चलिए आपको एक और ट्रैक के साथ अभी आगे लेकर चलती हूँ, इसे भी सुनिए और मेरे साथ बने रहिए इट हैपेंस में, सिर्फ और सिर्फ आपके अपने रेडियो ब्रिस्वानी पर।

0: इस वाणी पर इस वक्त आपने सताक्षी के साथ आज की सुबह, आज की मॉर्निंग एक बार फिर से, और हमेशा की तरह ये मॉर्निंग भी कई सारे प्रॉब्लम से घिर कर आई होगी। जी हाँ, मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता कि हर एक सुबह की जर्नी जो है वो बिना किसी प्रॉब्लम के गुजर जाए। भाई लाइफ है और इस लाइफ में ढेर सारी प्रॉब्लम्स भी साथ रहती हैं, जैसे कि उसके सॉल्यूशंस रहते हैं। तो हाँ, यही तो आपसे कहना है कि लाइफ की जर्नी में जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो अपने साथ वो लेसन्स लेकर आती हैं जो उसको सॉल्व करवाते हैं। लेकिन बस एक चीज है जो इस बीच में हम भूल जाते हैं कि हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन उन्हीं के साथ आया और हम उनको लेकर परेशान होना शुरू हो जाते हैं। तो बॉस, जिंदगी में कोई भी ऐसी परेशानी नहीं है जिसका कोई हल ना हो, है ना। तो एक्सपीरियंसेस जो हैं आपके, अगर आप उनको गौर करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे अपने एक्सपीरियंसेस के दम पे आप उन प्रॉब्लम्स को हल भी कर पाएंगे और उन प्रॉब्लम्स को जीत भी पाएंगे। ठीक है जी, तो चलिए आप अपनी प्रॉब्लम से निकलने के तरीके सोचिए। मैं फिलहाल आपके लिए प्ले करती हूँ ये अगला ट्रैक। स्टे ट्यून्ड रेडियो प्रसवानी, सताक्षी के साथ एंजॉय करते रहिए इट हैपेंस।
1: किस्मत से ज्यादा और वक्त से पहले कुछ नहीं होगा भैया।
2: तुझे पता माँ क्या कहती थी? कहती थी बेटियों की शादी कराने के लिए महादेव खुद आते हैं, जिस राम ने चोंच दिए वही दाना भी देगा।

बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे ते रेडियो स्टेशन रेडियो बिस्वानी 101.1 एम ते जी आप चे संदेश अलग दिनाल से बने हुए। देखो भारतीय सिनेमा सिर्फ बॉलीवुड की चकाचौंध तक सीमित नहीं रहा। पिछले कुछ सालों विच खेतरी भाषावां विच बनिया कई फिल्मां ने अंतरराष्ट्रीय मंचां ते भारत दा नाम रोशन कीता। BFTA कांस वैंस ते ऑस्कर वर्गे बहुत सारे अवार्ड फंक्शन विच भारतीय फिल्मां ने अपनी स्टोरी टैलिंग संवेदनशीलता नाल दुनिया नूं प्रभावित कीता हैगा। तां मैं सोचा कि क्यों ना तुहानूं उन्हां फिल्मां बारे दसां जिन्हां ने विदेश विच खूब वाहवाही वटोरी हैगी है। शायद बहुतियां बारे तुहानूं पता होना, बहुतियां बारे नहीं पता होना क्योंकि अदर लैंग्वेज दे विच हैगियां। तां अदर लैंग्वेज जिहड़ी आउंदी हैगी है तां उस बारे सानूं शॉर्ट मूवीज बारे ज्यादा पता नहीं हुंदा। तां चल मैं तुहानूं दस्सदी हां, ते जे तुहानूं समझ आउंदी होई तां जरूर देखियो क्योंकि इह फिल्मां बहुत ज्यादा वधिया है।

0: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जामिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम।
1: उसी आराम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना।
0: टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।
2: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
3: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
2: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
3: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

हाँ जी जी अनु जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे थे रेडियो स्टेशन रेडियो सोनी वन सर वन एम ते जी आर जे संदेश अलग दिन बने हुए हुणे ना फिल्मां दे विचों जिहड़ियां पूरी दुनिया दे विच छाइयां हुई ने, तां इह जिहड़ी लिस्ट मैं फरोल रही हां ते इस विच सब तों पहला नाम जिहड़ा आउंदा है उह हैगा है बूंग। जी हाँ, ये लक्ष्मी प्रिया देवी दे निर्देशन विच बनी मणिपुरी फिल्म हैगी है बूंगे फिल्म दा नाम। ते बूंग ने ना हाल ही विच बाफ्टा अवार्ड 2026 विच बेस्ट चिल्ड्रन एंड फैमिली फिल्म दा अवार्ड जीत के ना इतिहास रच दिता है। फरहान अख्तर ते रितेश सिद्धवानी दे एक्सल एंटरटेनमेंट द्वारा प्रोड्यूस इस फिल्म विच एक छोटे मुंडे दी कहानी है जो अपने पिता दी तलाश विच निकलदा है। फिल्म मणिपुर विच जाति तनाव ते सीमा दीआं चुनौतीआं नूं एक बच्चे दे नजरिए दे नाल दिखाउंदी हैगी है, जो बहुत वधिया लगती है क्योंकि जिहड़ी चीज बच्चे दे नजरिए दे नाल दिखाई जांदी है कि ना, वो नो डाउट कमाल दी हुंदी है।

0: मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे, उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
2: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। For best service, complete legal paperwork, marriage certificate and a memorable marriage ceremony, remember the name Parmanand, your professional and friendly civil marriage celebrant since 2003.

0: कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से। और तो और, हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर। याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है, सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
5: अच्छा वो क्या? अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
4: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
5: अरे रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
6: बियॉन्ड व्हाट यू सी Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number.

हाँ जी, वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे ते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रसवानी वन सर वाले हम ते जी आर चे संदेश चालक दिनाल से बने हुए। अगली फिल्म थोड़ी जी पिछे जाने हैं 2015 दे, फिल्म का नाम हैगा मसान। नीरज घायवान दी डेब्यू फिल्म वाराणसी विच दो कहानियां, देवी जिस जो रिचा चड्डा बने से ते दीपक जो विकी कौशल बने से दी सामाजिक दबा ते मुक्ति दी खोज ये है की है। 2015 दे कांस फिल्म फेस्टिवल विच दो पुरस्कार जीते जिस विच FIPRESCI अवार्ड्स अते प्रोमिसिंग फ्यूचर प्राइज सीगा। वाराणसी दी उथे जमीन ते बनी इस फिल्म विच रिचा चड्डा ते विकी कौशल ने यादगार एक्टिंग की थी है। विकी कौशल दी किस्मत इस फिल्म दे नाल चमकी सी।

0: फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्टवेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज rani-creations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे, रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

जी तक फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रसवानी वन सन वन एम ते जी आरचे संदेश अलग दिनाल से बने हुए। अगली फिल्म है किया ऑल दैट ब्रीड्स। ए नाम सुन के लगता है कि हॉलीवुड मूवी होनी है, बट नो नो नो नो नो नो ए हॉलीवुड मूवी बिल्कुल भी नहीं। ऑल दैट ब्रीड्स ए इंडियन मूवी है कि शौनक सेन वालों निर्देशित डॉक्यूमेंट्री है कि 2023 ऑस्कर दे नॉमीनेट हुई सी। 90 मिनट की यह फिल्म दिल्ली के वजीराबाद विच दो भरावां की कहानी है जो जख्मी काली चिलन बचाते हैं कि ने। फिल्म ने कांस विच गोल्डन आई अवार्ड ते संडांस विच वर्ल्ड सिनेमा ग्रांड जूरी प्राइज समेत 17 इंटरनेशनल अवार्ड जीते हैं कि ने। इस 2023 ऑस्कर विच बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर नॉमीनेशन मिले है।

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding. And I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602. 0411-022-602. Or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करे प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
2: Only God can judge me, that right? Only God, baby. Nobody else.
3: They secret.
4: Hey, yo, Sean. ਕਦੀ ਨੱਕ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਰਾਹਾਂ ਦੀ ਮਕਾਮਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਮੇਰੇ ਰਾਹਾਂ ਦੀ ਮਕਾਮਾਂ ਨਾਲ ਪੱਕ ਠੱਕ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ

हां जी एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रसवानी 101.1 ते जी आर जी संदेश अलग दे नाल तुसी बने होए हो। इस तो बाद अगला जिहड़ा नाम हैगा इस लिस्ट दे विच ओ है जी कोर्ट स्टे कोर्ट स्टेट वर्सेस अनुबा जी कोर्ट ते चैतन्य तामने दी ए एक होर फिल्म कोर्ट ने 2024 दे वेनिस फिल्म फेस्टिवल विच दो पुरस्कार जीते सी लायन ऑफ द फ्यूचर अवार्ड ते ओरिजोंटी कैटेगरी विच बेस्ट फिल्म। ए फिल्म भारतीय कानून व्यवस्था विच विसंगतियां नूं करारा व्यंग हैगा उसते जिस विच एक लोक गायक ते आत्महत्या दे लई उकसाउण दा आरोप लग्गिया हैगा। इस दे नाल ही होर फिल्म बारे दस दिंदी आ, ओह हैगी है जी पर्च्ड। लीना यादव वालों निर्देशित पर्च्ड पेंटू भारत विच महिलावां दे दमन उते उसते प्रतिरोध दी कहानी हैगी है। इस फिल्म ने दुनिया भर विच इस नूं बहुत पसंद कीता गया। इस फिल्म ने 18 इंटरनेशनल अवार्ड जीते हैगे ने। तनिष्ठा चटर्जी राधिका आपटे ते सुरविन चावला इस फिल्म दे विच लीड रोल दे विच है कि नहीं। फिल्म ने पेंडू भारत दी उन महिलावां दी कहानी बयां कीती है जो पितृ सत्ता नाल लड़दे आजादी दी राह तलाशदियां हैगियां ने।

0: मामू,
1: ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
2: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
1: ऐसा क्या खास है वहाँ?
2: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
1: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
2: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
3: नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असीं 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असीं होर भी वड्डे डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानी स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विले शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असीं तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
4: के आलम में नशा हो जब तेरे रुखसार देखूं, खुदा ने जब तराशा होगा वो असरार देखूं, निगाहों में बसा है इस कदर ये नूर तेरा, कुर्बान हर दफा हूं तुझको जितनी बार देखूं।

0: house. जी देखो वेड़ा तो हो चुका है थोड़े तो इजाजत लैन का, पर जान तो पहला थोड़ू कुछ एक होर फिल्म बारे दसना जरूरी सी, मैं सोचा भी दस दिनी हाँ। तो उस फिल्म का नाम है चिट्टी डिसिप्लिन जी है, चैतन्य वालों निर्देशित मराठी फिल्म हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की दुनिया से आधारित हैगी है। फिल्म नू वेनिस फिल्म फैसटिवल विच एफ आई PRESCI अवार्ड मिले हैगा, अल्फोंसो कोरान हॉलीवुड के मशहूर निर्देशक इस दे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर से गए। फिल्म एक संगीत साधक की कलात्मक पूर्णता की तलाश से आधुनिक दुनिया नाल टकरा दी कहानी है, बहुत ज्यादा सोहनी हैगी है फिल्म, तुसी जरूर देखियो। बाकी मिलते तो असं रहने हूं, जुड़ते जरूर है करो तुम सा रेडियो ब्रिसवानी 101.1 साड़ा फेसबुक पेज है जी, brisawani@brisawani.com साड़ी ईमेल आई डी है, जरिए जेड़ा भी तुम अपना चाहते हो अपना लो, पर सा गलबात जरूर करो है ना। ते बाकी मैं तो यही कहना है कि अपना बहुत बहुत ख्याल रखा करो, सत श्री अकाल।
1: What does this fight mean to you to defend your title tomorrow night? Yo, I'm gonna smash your boy. Kid, tomorrow.

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
3: यार, I'm so worried. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
2: मेरी advice है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का vast experience है और law की entry cases को handle करने में उनकी expertise है. Criminal law, domestic offence, traffic drug offence में 12 साल से ज्यादा का rich experience. और तो और conveyance, family law, immigration laws में भी भारद्वाज एंड associates के lawyers का vast experience है. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
3: Thanks Atanya, I'm so relaxed to hear that.
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
4: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
5: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।
6: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।
7: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।
8: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।
9: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
10: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani से.
11: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
12: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio.
13: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है. एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है. ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है. यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है. लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है. यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं.
14: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है. सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे.
15: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है. मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का.
14: अच्छा, वो क्या?
15: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में.
14: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा.
15: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी. डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें.

0: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जैमिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शांडिला थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शांडिला। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम।
1: ओ सिया राम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना।
0: टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premierTickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।
2: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
3: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
2: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
3: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम, इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
4: भाई, मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
5: तो ओम्स ऑर्ग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
4: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
5: अरे, ओम्स ऑर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
4: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
5: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
4: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
5: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448381360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470631801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
6: ओम्सॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

0: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
1: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
2: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
1: Wow, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व, पर एड्रेस?
2: एट शॉप 9B सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल prince jewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.

0: फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। ब्रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। ब्रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करे प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438, 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660, 0415-952-660।

0: तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: Yes baby, but no compromise with quality and health. हम जाएंगे सिर्फ MC's Indian and Island Food.
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, quality spices, lentils, rice, flour और frozen sabzi from Fiji and India. Brisbane के best Indian butcher supplying farm fresh goat, lamb, chicken and duck और fresh local produce भी रखते हैं. साथ ही kitchenware and disposable plates की large range किसी भी function के लिए.
0: अरे वाह, intelligent हो गई हो.
1: MC's Indian Indian and Island Food, serving Brisbane since 1999. Open 7 days. Find us on Facebook or visit website mcsfoods.com.au. 1 by 268 Kingston Road, Slacks Creek, phone number 3804-3818. That's 3804-3818.
2: क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हां। असी होर भी वड डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तों भी अग्गे दे समें वास्ते इक नवी खेड इमारत जिस विच इक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: 0400-234-235. That is 0400-234-235.
1: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
2: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
1: अरे वाह, इनका पता बताना।
2: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.

कैसे हो आप सब? सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम शुरू हो गया है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निविया के साथ। और सबसे पहले हैप्पी फ्राइडे आप सबको। जी हाँ दोस्तों, फ्राइडे आ गया है, फ्राइडे की मस्ती छाने वाली है, तो आप भी शिरकत। फ्राइडे का प्रोग्राम थोड़ा बिंदास और बिंदास होने के लिए सारे रीजंस हैं हमारे पास। क्या? वेल, आपको पता ही है फ्राइडे है, वीकेंड जो है वो आ गया है, मस्ती धूम जो है वो सब होगा, गाने होंगे, जबरदस्त गपशप होगी और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी होगी। तो बेसिकली सारी चीजें अच्छी अच्छी होने वाली है। आप लोग क्या कर रहे हैं, आ जाइए। और इसी के साथ प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं सबसे पहले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिचुअल के साथ, और वो है डीप ब्रेथ एक्सरसाइज। जी हाँ, सबसे पहले वही करेंगे। क्या बात है, अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। और इसी के साथ अच्छा फील करते करते शुरुआत होगी प्रोग्राम की एक बढ़िया। स्टार्टिंग में ही मैं आपको इतना थोड़ा गेस कर, आपको बताते हैं सबसे पहला गाना कौन सा है, वो है खड़के गल। और मजेदार सी धूमधार सी शुरुआत होगी क्योंकि ये है फ्राइडे। और सुनते हैं इस गाने को और फिर

जी दोस्तों, और इसी के साथ ये जबरदस्त गानों के साथ शुरुआत हो गई है। तो अब जरा रुक करते हैं, मौसम का टेम्परेचर क्या कह रहा है, वेदर क्या कह रहा है। जी हाँ, उसी के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले 25 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर रहा, वहीं अगर अभी की बात की जाए तो 22.3 डिग्री सेल्सियस के करीब है, बट फील आपको 20 डिग्री सेल्सियस के करीब हो रहा है। जी हाँ, अब ये वही में आपको ऐसा लगेगा नहीं नहीं ठंड, आपको आती रहेगी अभी कुछ दिन। जी हाँ, इसी के साथ यहाँ पर रात के टेम्परेचर की बात की जाए तो 16 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आप तापमान में देख पाएंगे, यानी कि 16 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रहने वाला है। वहीं चांसेस ऑफ रेन 50%, और जो कि मुझे 6 बजे से होता हुआ नजर आ रहा है, मतलब 6 बजे के बाद जो है ये बारिश होती हुई मुझे नजर आ रही है। अगेन कुछ इलाकों में होगी, कुछ में नहीं होगी, सो वो डिपेंड करता है आप कहाँ हैं और क्या आपके इलाके में बारिश होने वाली है या नहीं होने वाली है। एयर क्वालिटी की बात करें तो एकदम एक्सेलेंट है, और वहीं अगर बात की जाए कल की यानी कि सैटरडे एंड संडे की, बेसिकली वीकेंड की, तो 25 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर रहेगा कल यानी सैटरडे को विद 30% चांसेस ऑफ रेन। थोड़ी बहुत क्लाउडी सिचुएशन भी रहने वाली है। और वहीं अगर बात की जाए संडे को तो पूरी तरह चमकता हुआ सूरज मुझे दिख रहा है विद 28 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर संडे को फिर से बढ़ जाएगा, मतलब सुहाना मौसम होने वाला है। रेडी रहिए, आप बाहर निकल सकते हैं, मजे से जा सकते हैं, घूम सकते हैं, पिकनिक मना सकते हैं, और जो भी आपको आउटिंग में करना पसंद है वो आप कर सकते हैं। इसी के साथ ये है मौसम का हाल। अब जरा चलते हैं आगे की ओर, और एक बहुत ही खूबसूरत सा गाना हम आपके लिए यहाँ पर प्ले करने वाले हैं।

0: तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाली शॉप से ले सकते हैं ना?
1: Yes baby, but no compromise with quality and health. हम जाएंगे सिर्फ MC's Indian and Island Food.
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, quality spices, lentils, rice, flour और frozen सब्जी from Fijian India. Brisbane के best Indian butcher supplying farm fresh goat, lamb, chicken and duck और fresh local produce भी रखते हैं. साथ ही kitchenware and disposable plates की large range किसी भी function के लिए.
0: अरे वाह, intelligent हो गई हो.
1: MC's Indian and Island Food, serving Brisbane since 1999. Open 7 days. Find us on Facebook or visit website mcsfoods.com.au. 1 by 268 Kingston Road, Slacks Creek, phone number 3804-3818. That's 3804-3818.

होगी ना छोड़ी है कोई कसर, टॉप टू बॉटम मार्क्स तुझे दिए मैंने 10 out of 10, क्यों नहीं चाहिए, चल ओके देन। भरे क्लब में रह जाएगी बिल्लो, फिर कल ले तू कौन संभालेगा तुझको जब हो जाएगी टल।

चल ओके देन। बड़े क्लब में रह जाएगी बिल्लो, फिर कल्ली तू कौन संभालेगा तुझको जब हो जाएगी टल्ली।

जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ कल ही की बात है, मैं सोशल मीडिया चला रही थी और मैं इंटरनेट स्क्रॉल कर रही थी, सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रही थी और वहां पर मेरे आंखों के सामने एक बड़ा ही जबरदस्त सा मीम आता है और वो इतनी सेंस बना रहा था, क्योंकि हमारे सामने या हमारे आजू बाजू हमारे आसपास ऐसा कोई ना कोई एक इंसान तो है जो ऐसे ही कहता है। जी हाँ, तो उसमें लिखा हुआ था आई एम सच अ जो होगा देखा जाएगा पर्सन, फिर जो होता है वो मुझसे देखा नहीं जाता। एंड आई वॉज लाइक वाओ, मतलब आपको कोई ना कोई ऐसा बोलता हुआ तो सुनी जाएगा, अरे कोई नहीं जो होगा देखा जाएगा, अरे तो क्या हो गया जो होगा देखा जाएगा, अभी टेंशन नहीं लेते, लेकिन जब फिर वो होता है तो फिर वो देखा नहीं जाता। सो ऐसे में वही लोग जो आपके आजू बाजू और वो ऐसे बोलते हैं, उनको जरा ये मीम भेजना, अगर आपको मिलते तो बिल्कुल मत भूलिएगा। और उनसे पूछिएगा जब वो बोलते हैं कि जो होगा देखा जाएगा, तो उनसे पूछिएगा कि पर अगर वो सच में हो गया तो क्या आप देख पाएंगे। जी हाँ, एंड It makes sense. मैं कहती हूँ ना, इतनी रियल चीजें हैं इंटरनेट पर इस वक्त, मैं क्या ही बताऊँ आपको, मतलब क्या रियल लॉजिक, रियल क्वेश्चन, रियल क्रिएटिविटी। आई एम लविंग दिस काइंड ऑफ सोशल मीडिया मीम्स। जी हाँ, यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

वाले तरफ को ज्यादा थी, बट ये कॉमेडी वाले तरफ को थोड़ी कम रहेगी, बट वैसा ही कुछ आपको सर्व करने वाली है। जी हाँ, तो इसी के साथ जो मूवी जो है एक और रिलीज हो गई है वो है महाकाव्य श्री रामायण कथा। रणबीर कपूर वाली मूवी रिलीज हो गई? ना ना ना ना ना ना, यही सोच रहे हैं सब, लेकिन ये वो नहीं है जो हम सोच रहे हैं। जो रणबीर कपूर वाली है वो दिवाली पे रिलीज, ये वाली रामायण जो है इसे अंजलि अरोड़ा, देव शर्मा और रजनीश दुग्गल के साथ मिलकर जो है वो बनाया गया है। बहुत बड़ा बजट वाली मूवी नहीं है, लेकिन अगेन रामायण का एक पर्सपेक्टिव इसमें भी दिखाया गया है। और जो ट्रेलर से मुझे एक्टिंग जो है वो वीक लग रही है, सिर्फ और सिर्फ रजनीश दुग्गल की एक्टिंग मुझे अच्छी लगी, बाकी सबकी एक्टिंग मुझे उतनी अच्छी नहीं लग रही थी। सो बजट कम है, सो वीएफएक्स वाले केस में भी इनका ज्यादा, बट अगर आप देखना चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं अपने बच्चों को तो आप दिखा सकते हैं। या ये है महाकाव्य श्री रामायण कथा जो कि हो गई है रिलीज इसी ही वीकेंड। जी हाँ, अब इसी के साथ पुरानी मूवीज की तरफ चलते हैं जो ऑलरेडी रिलीज हो गई है पिछले हफ्ते या उससे पिछले हफ्ते। सबसे पहले दायरा की बात करते हैं जो कि रिलीज हो गई थी पिछले हफ्ते, जी हाँ 18th of September को। ये है क्राइम ड्रामा थ्रिलर मूवी और ये पैन इंडिया सुपरस्टार पृथ्वीराज सुकुमारन के साथ करीना कपूर खान आपको मिलने वाली है। मतलब टच होगा थोड़ा साउथ इंडिया का, थोड़ा बॉलीवुड का, और उसी के साथ आपको ये सर्व किया जाएगा। जी हाँ, सो ये मूवी पिछले हफ्ते रिलीज हो चुकी थी एंड क्राइम और थ्रिलर आपको पता ही है ये जॉनर सबसे ज्यादा चलने वाला जॉनर है इस वक्त का, पिछले साल का। तो आप देखिए और मुझे बताइए आपको कैसी लगी, और इसी के साथ और क्या क्या आप देख सकते हैं थिएटर्स में वो

नमस्कार दोस्तों, इसके साथ आपको बता रहे हैं कि कौन कौन सी मूवीज आप देख सकते हैं इस हफ्ते नजदीकी सिनेमा घरों में। हम आपको बता चुके हैं इंडियन मूवीज में क्या नया रिलीज हुआ है, और अब जरा बात करते हैं बात होगी जैसे मैंने कहा था कि दायरा हो गई है रिलीज पिछले हफ्ते, तो आप वो देख सकते हैं। इसी के अलावा द पैराडाइज, जी हाँ, एक्शन एडवेंचर एंड ड्रामा, इट्स अ पैन इंडिया मूवी, ऑफ कोर्स यू कैन लाइक इट, क्योंकि बहुत सारी जो साउथ की मूवीज हैं वो हमें पसंद आती हैं, क्योंकि उसमें जो एलिमेंट होता है वो एलिमेंट बॉलीवुड एड नहीं कर सकता। जी हाँ, इसी के साथ लव लॉटरी भी आप देख सकते हैं, और ये है ड्रामा रोमांटिक सस्पेंस, अगेन ये भी आज ही रिलीज हुई है, और इसमें है ओबरॉय और हेली दारूबाला। जी हाँ, और अगेन ड्रामा रोमांटिक और सस्पेंस है इसमें, तो सस्पेंस किसको पसंद नहीं है। देखिए वाइब की बात करते हैं, प्रीति जिंटा ने फिर से एंट्री मारी है कुणाल खेमू के साथ, और यहां पर वाइब जो है वो एक कॉमेडी मूवी है, एक्शन कॉमेडी मूवी है, जो कि अगेन आपको पसंद आ सकती है, एंड इफ यू लाइक प्रीति जिंटा यू कैन गो फॉर इट। जी हाँ, इसी के साथ यहां पर एक मूवी है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं काफी वक्त से, और वो है मिर्जापुर। जी हाँ, मिर्जापुर द मूवी जो है वो भर भर के कमाई कर रही है, हिट क्या सुपर हिट हो गई है, और यहाँ पर पंकज त्रिपाठी का मैजिक जो है वो चल गया है। लेकिन सिर्फ पंकज त्रिपाठी नहीं, अली फजल, दिवेंदु शर्मा, अभिषेक बनर्जी, रवि किशन सबका चला है, मतलब ऑफ कोर्स अकदंदन त्रिपाठी, जी हाँ, गुड्डू पंडित, मुन्ना त्रिपाठी और साथ में बहुत सारे लोग वो फिर से एंट्री मार रहे हैं। इट्स जस्ट दैट कि वो सीरीज नहीं है, मूवी है, मतलब मिर्जापुर नॉट द सीरीज बट द मूवी। अगेन यू कांट वॉच इट विद योर फैमिली बिकॉज अगेन ये मूवी जो है वो बहुत सारी गालियों और कुछ ऐसी चीजों से भरी है जो कि आप अपनी फैमिली के साथ नहीं देख सकते, आप अपने बच्चों को नहीं दिखा सकते, बट या यू कैन एंजॉय इट विद योर फ्रेंड्स अगर आप मिर्जापुर द सीरीज के फैन है। बट अगेन पहले आप ट्रेलर देखिए और फिर डिसाइड कीजिए कि आप देखना चाहते हैं या नहीं। एंड अगेन जो सबसे इंपॉर्टेंट मूवी मैं आपको रिकमेंड करने वाली हूं वो है हनुमान अंश, जो कि है, जी हाँ, जो कि है बहुत ही खूबसूरत मूवी। नीम करोली बाबा, वही बाबा जी जिन्होंने इंस्पायर किया स्टीव जॉब्स से लेके मार्क जुकरबर्ग से लेके विराट कोहली, अनुष्का, मतलब कौन इनको नहीं पूछता, एंड इट्स नॉट बिकॉज ऑफ ही वांटेड टू डू इट बट द वे ही स्टार्टेड हिज लाइफ, वो जो जर्नी है इनकी लाइफ की उसी को यहां पर दिखाया गया है। जी हाँ, और क्यों इस मूवी का नाम हनुमान, इसी के साथ कुछ हॉलीवुड मूवीज भी हैं जो लगी हुई हैं, आप देख सकते हैं, लेकिन अगेन लंबी हो जाएगी बात, तो यहां पर हम आपको सुनाने वाले हैं एक गाना मजेदार सा, फिर उसके बाद हम बात करेंगे उसके बारे में।

0: अज्जी कॉन्टैक्ट करो अतुल जीनू ऑन 0400-234-235, दैट इज 0400-234-235।
1: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
2: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
1: अरे वाह, इनका पता बताना।
2: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
3: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
4: यार, I'm so worried. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
3: मेरी advice है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का vast experience है और law की entry cases को handle करने में उनकी expertise है. Criminal law, domestic offence, traffic drug offence में 12 साल से ज्यादा का rich experience. और तो और conveyance, family law, immigration laws में भी भारद्वाज and associates के lawyers का vast experience है. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
4: Thanks Atanya, I'm so relaxed to hear that.
3: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
5: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
6: Hi, this is Amitabh Bachchan.
7: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।
8: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।
9: Hi, this is Salman Khan.
10: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।
11: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।
12: To everyone tuning into Radio ब्रिस्वानी, this is Alia.
13: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी
14: से। To everyone tuning into Radio ब्रिस्वानी, this is Shahrukh Khan.
15: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।
16: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
17: जी हां दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्बेन 1701 AM, शो चल रहा है इवनिंग वाइब आरजेनी बैक। तो एक स्टोरी और है एक लड़की का जिसने अपनी मॉडर्न इंडियन क्राफ्ट को पेश किया। जी हाँ, अब आपने बहुत सारी जगहों पर कुछ वक्त पहले फैशन चल रहा था कि कपड़े हैं, कपड़े में भी ज्वेलरी जो है वो लगा दी जाती थी, सो ज्वेलरी से बने हुए कपड़े जो है वो पहने जा रहे थे। जी हाँ, लेकिन अब जो हुआ है वो और भी ज्यादा दिलचस्प है। जी हाँ, सो ये इंडियन क्राफ्टमैनशिप को प्रेजेंट करती हुई एक दिल्ली बेस्ड आर्टिस्ट ने, जो कि आर्किटेक्ट हैं, उन्होंने नाम है उनका आशिता रेलन, उन्होंने एक बहुत ही जबरदस्त काम कर डाला है और उन्होंने ये काम किसी भी लग्जरी फैशन डिजाइनिंग हाउस से पहले कर दिया है। क्योंकि आपको पता ही है कि जो लग्जरी फैशन डिजाइनिंग हाउसेस हैं वो सब जो है वो हमें कॉपी करने की कोशिश करते हैं, इंडियन ट्रेडिशंस को कॉपी करने की कोशिश करते हैं, हेरिटेज को, फैशन को कॉपी करने की कोशिश करते हैं, और कॉपी करने की कोशिश करते हैं वो तो एक चीज है, लेकिन उसका क्रेडिट नहीं देते हैं वो दूसरी चीज है। फिर वो चाहे कोल्हापुरी चप्पल हो, फिर चाहे चाय वाला परफ्यूम हो, चाहे कुछ भी हो, मतलब दे डू इट एवरी टाइम। जी हाँ, इनफैक्ट ये चीज इतनी ज्यादा बढ़ गई है आगे कि अभी कुछ वक्त पहले ही एक रैंप वॉक के वक्त एक जो शो था, जी हाँ फैशन शो था, एक बहुत ही बड़े डिजाइनर हाउस का, उसमें उन्होंने लिटरली हैंडवर्क किया हुआ था, जिसको करदाने का काम कहते हैं इंडिया में, और वही वर्क उन्होंने शो किया, लेकिन उसको उन्होंने ये नहीं कहा कि उन्होंने एग्जैक्टली उसे कहां से लिया है, कहां से कॉपी किया, उन्होंने कहा कि नया ही नाम हमने इसे देंगे और ये तो हमने ही इन्वेंट किया। भाई इंडिया में वो काम हमेशा से होता आ रहा है, फिर चाहे करदाने का काम है, फिर चाहे वो कोल्हापुरी चप्पल है, फिर चाहे चाय हो। सो यहां पर एक इंडियन लड़की ने सोच लिया कि इससे पहले ये और कुछ कॉपी कर ले, मैं कुछ अपना ही करके इंडियन फैशन को और भी आगे ले जाती हूँ। सो उसने क्या किया है, उसने हेडफोन्स डिजाइन किए हैं। जी हाँ, हेडफोन्स पे ज्वेलरी लगा दी है। सो मतलब अब वो हेडफोन्स जो हैं, जो लड़कियां पहनती है, वो ज्वेल्ड एयरफोन्स भी पहन सकती हैं, हेडफोन्स भी पहन सकती हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। सो ये जबरदस्त सा एलिमेंट जो है, अनारकली डिस्को चली जो है, ये वहां से एस्थेटिक जो है वो आया है, और ये स्ट्राइकिंग पेयर ऑफ हेडफोन्स जो है इज इंस्पायर्ड बाय हेयरलूम ज्वेलरी। जी हाँ, सो बेसिकली हेडफोन्स जो है वो हेडफोन वाला काम करते हैं, लेकिन उस पे ज्वेलरी जो है लगी हुई है, मतलब आप उसको देख के कह ही नहीं सकते कि वो कोई ज्वेलरी पीस नहीं है, वो हेडफोन है। लिटरली उसने इतनी खूबसूरती से उसे सजा दिया है। सो वो एलिमेंट्स जो है वो मीनाकारी, पोल की पर्ल्स एंड झुमका इंस्पायर्ड डिटेल्स के साथ वो हेडफोन्स जो है दे लुक लेस लाइक एवरीडे टेक्नोलॉजी एंड मोर लाइक अ पीस ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन ज्वेलरी। एंड यू नो व्हाट, अभी मैं सोच ही रही हूं कि कब कितना ही वक्त लगेगा इसे फेमस होने में, बिकॉज इट कैन बी a very very good idea। जी हाँ, मतलब उस लड़की ने वो सोच लिया जो बहुत टाइम से हम नहीं सोच पा रहे थे, और इससे पहले लग्जरी फैशन हाउसेस जो कि बाहर के हैं वो सोच लेते, उसने पहले ही सोच लिया और कर भी दिया कि इससे पहले वो लोग कॉपी करें मैं ही करके दिखा देती हूँ, तुम हमारी चीजें छोड़ते हो ना, अब देखो हम टेक्नोलॉजी में भी अपनी ज्वेलरी घुसा देंगे। जी हाँ, सो दैट्स व्हाट शी डिड। आप मुझे बताइए, क्या आप हेडफोन्स पहनना पसंद करेंगे जिसपे ज्वेलरी लगी हो? जी हाँ, आई एम टॉकिंग अबाउट माई ऑल गर्ली लिसनर्स। जी हाँ, यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से, जो कि अगेन जबरदस्त है।
9: बताई भैया हमरा हाल का है,
18: बताए दे।
9: निकले थे हम हलवा खाने, मुंह ही जल गया है।

हमने जाग जाग की ऐसी भागम भाग कि हम कभी आ गए कभी हुआ गए कभी ही आ गए कभी हुआ गए कभी इधर भगे कभी उधर भगे फिर तुमने दिया ये पान तो आई हमरी जान में जान तो आई हमरी जान में जान।

जी दोस्तों, और इसी के साथ हम जरा चलते हैं सीधा खबरों की तरफ। जी हाँ, खबरों की तरफ रुख करने का वक्त आ गया है। सबसे पहले शुरुआत हो रही है सिक्किम से, यानी कि भारत की एक खबर से जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। भारत के सिक्किम में भारी बारिश से भूस्खलन, मुख्यमंत्री तामंग ने कहा हालात गंभीर। जी हाँ, उत्तर पूर्वी राज्य सिक्किम में हुई भारी बारिश से ग्याल शिंग जिले के रिम्बी गांव में भूस्खलन हुआ है। यहां कई घर, सरकारी क्वार्टर और अन्य संपत्तियां बह गए हैं। जी हां, सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तामंग ने फेसबुक पर लिखा कि बीती रात हुए भीषण भूस्खलन के बाद रिम्बी ग्याल शिंग जिले की स्थिति से बेहद दुखी और चिंतित हूं। स्थिति गंभीर बनी हुई है और लोगों की सुरक्षा और हित हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। सरकार इस मुश्किल समय में रिम्बी के लोगों के साथ मजबूती से खड़ी है। संबंधित अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रहने, स्थिति पर करीबी नजर रखने और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने अपील की कि आइए सतर्क रहें और इस मूसलाधार बारिश के दौरान सुरक्षित रहें। अधिकारियों की ओर से जारी सलाह का पालन करें और एक दूसरे को हर संभव मदद दें। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने रिम्बी के स्थित की स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा कि प्रभावित लोगों की सुरक्षा और भलाई सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। जी हाँ, इसी के साथ यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: सांसों की माला पे सिमरूं मैं।
3: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जानिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम।
4: उसी आराम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना।
3: टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।
5: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता। लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करे प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए। इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM, शो चल रहा है मेरे अनियार चेनी। दोस्तों, वही यूनाइटेड नेशंस की महासभा में बहुत कुछ चल रहा है। जी हाँ, तो सबसे पहले बात करते हैं मिस्टर नेतन्याहू की। जी हाँ, प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू जो कि इसराइल के हैं और वो भी वहां पर पहुंचे हैं और उन्होंने एक बड़ी ही खतरनाक सी स्टेटमेंट दी। जी हाँ, तो जब वो आए पोडियम पर तो बहुत सारे लोग जो है वो हॉल को छोड़कर जाने लगे, तो उन्होंने कह दिया कि और भी कोई है जो कि मॉरल की कोशिश कर रहा है तो वो भी जा सकता है। थैंक यू, या दैट्स व्हाट ही सेड। जी हाँ, और ये सुनकर बहुत सारे लोग जो हैं वो वहां से जा भी रहे थे और फिर वो एक और चीज कहते कि कुछ लोग जो हैं वो उनका ऑफकोर्स वो भी कर रहे थे, कुछ लोग उनके साथ भी दे रहे थे। वहीं संयुक्त राष्ट्र महासभा में इसराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का भाषण शुरू होते ही कई देशों के प्रतिनिधि सभागार से बाहर निकल गए। जी हां, सभागार से बाहर निकल गए। नेतन्याहू ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में इस घटना के बाद अपने संबोधन की शुरुआत तीखी टिप्पणी से की। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत में ही कहा कि अगर कोई और नैतिक रूप से कायर है, जी हां व्यक्ति है, तो अभी तक इस सभागार से बाहर नहीं गया है, तो कृपया करके अब वो बाहर चला जाए। जी हां, उन्होंने कहा कि अगर कोई नैतिक रूप से कायर व्यक्ति अभी तक इस सभागार से बाहर नहीं गया है तो कृपया अब बाहर चला जाए। जी हां, नेतन्याहू ने दावा किया कि जो देश निजी तौर पर इसराइल का बचाव करते हैं उन्हीं देशों के प्रतिनिधि संयुक्त राष्ट्र के सभागार से बाहर निकल गए। जी हां, उन्होंने इसे हैरान करने वाला पाखंड भी बताया। लेकिन वो स्टेटमेंट जो है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी और यहां पर जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे लोग बाहर निकल गए, पर बहुत सारे लोग, कुछ लोग, बहुत सारे नहीं, कुछ लोग उन्हें चेयर करते हुए भी नजर आए। उन्होंने हूटिंग की जब उन्होंने ये कहा कि जो भी कायर लोग हैं, मोरल तरीके से कायर लोग, वो यहां से बाहर चले जाएं अगर वो अभी तक नहीं गए हैं। यहां पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

0: मुझे भी कुछ कहना है,
1: मुझे कुछ कहना है,
0: मुझे भी कुछ कहना है।
1: पहले तुम,
0: पहले तुम,
1: पहले तुम,
0: पहले तुम,
1: पहले तुम,
0: तुम,
1: तुम,
0: तुम,
1: तुम,
0: तुम,
1: तुम,
0: तुम। देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप, पहले आप, पहले आप, पहले आप करके निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।
1: अच्छा मैं कहती हूँ

राष्ट्र महासभा के पास प्रधानमंत्री बालन शाह ने भारत को कहा शुक्रिया। जी हाँ, नेपाल के प्रधानमंत्री बालन भारत और चीन का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने बीते साल के दौरान मदद दोनों देशों के प्रति खास के 81st सत्र में नेपाल के बालन शाह प्रस्ताव है कि नेपाल भारत और चीन के नेतृत्व में हिमालयी जलवायु तंत्र स्थापित किया जाए। उन्होंने कहा कि इस तंत्र के जरिए हम सैटेलाइट डेटा और अपनी विशेषज्ञता साझा करें। हम खतरनाक ग्लेशियल झील व्यवस्था को मजबूत करें। बालन शाह ने कहा कि जब कोई आपदा आए तो हम सीमाओं के पार राहत और सहायता के लिए तालमेल स्थापित करें। उन्होंने सुझाव दिया कि हिमालय अलग अलग स्तर पर नेपाल में पिछले महीने आई बाढ़ में करीब 1500 लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 6000 लोग उसमें लापता भी हुए हैं।

लेट्स अस टॉक अबाउट मिस्टर ट्रंप, बिकॉज ट्रंप बी ट्रंप वो अभी भी कुछ हरकतें कर रहे हैं और वो हरकतें हमें एंटरटेन भी कर सकती हैं, हमें रेज बेट भी कर सकती हैं. सो या ध्यान से सुनिए, बिकॉज आपकी चॉइस है आपको क्या करना है. जी हाँ, यहाँ पर सबसे पहले आपको लेकर जाते हैं 14 साल पहले, जब बराक ओबामा होस्ट कर रहे थे शी जिनपिंग को, जी हाँ, चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को पेंटागन में, जी हाँ. तो उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किया था. क्या मैं आपको उस ट्वीट को सुनाऊं? जी हाँ. सो वो ट्वीट कुछ ऐसा था कि सो रॉन्ग, बराक ओबामा इज होस्टिंग चाइनाज वाइस प्रेसिडेंट वीपी शी जिनपिंग टुडे एट द पेंटागन विद द फुल ऑनर सेरेमनी विद द म्यूजिक एंड कैनन्स. जी हाँ, ध्यान से सुनिएगा. सो रॉन्ग, बराक ओबामा इज होस्टिंग चाइनाज वीपी शी जिनपिंग टुडे एट द पेंटागन विद अ फुल ऑनर सेरेमनी विद म्यूजिक एंड कैनन्स. यू नो, कट टू 2026. जी हाँ, पिछले दिन बहुत कुछ हुआ है, पिछली रात बहुत कुछ हुआ है. जी हाँ, ना सिर्फ शी जिनपिंग के आने पर, जब डोनाल्ड ट्रंप खुद प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने रेड कारपेट बिछा दिया. वो खुद उन्हें लेने एयरपोर्ट पर पहुंच गए. मुझे समझ नहीं आता, मतलब जिस हिसाब से ये सैंक्शंस लगाते हैं वहां से तो लगता है कि इनको चाइना पसंद नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से ये स्वागत कर रहे हैं ऐसा लग रहा है कि ये एक तरफा मोहब्बत है ट्रंप की शी जिनपिंग के लिए. नाउ यू कैन टेक इट हाउएवर यू वॉन्ट. जी हाँ, यहां पर अपनी बारी में बंदे ने लिटरली रेड कार्पेट बिछा दिया, पूरी तरह से लुभाने की कोशिश कर रहा है चाइना को कि चाइना मेरे दल में आ जाए किसी तरह, तो मजा आ जाए. बट ऐसा होगा नहीं, बिकॉज चाइना बीइंग चाइना, इट विल डू वट एवर इट वॉन्ट टू डू. मतलब वो नहीं करेगा वो जो कोई और कंट्री चाहती है, वो वही करेगा जो उसके हित में है और जो वो करना चाहता है. सो रॉन्ग वाली जो स्टेटमेंट है, जब बराक ओबामा होस्ट कर रहे थे शी जिनपिंग को, कि भाई कितना ये कितना गलत है, ऐसे कैसे होस्ट कर सकते हैं शी जिनपिंग को, लेकिन खुद वही काम कर रहे हैं. जी हाँ, उसी के साथ ट्रंप ने शी जिनपिंग को एक और बहुत ही जबरदस्त जेस्चर दिखाया है. जी हाँ, उन्होंने चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को एक बॉल्ड ईगल स्कल्पचर जो है वो भेंट किया है, उन्होंने गिफ्ट दिया है, और ये स्टेट डिनर जो कि व्हाइट हाउस में हुआ उसके दौरान उन्हें दिया गया. जी हाँ, और ये सिंबल है ऑफ द फ्री एंड सोरिंग स्पिरिट ऑफ अमेरिका. नाउ आई डोंट नो कि चाइना फ्री एंड सोरिंग स्पिरिट ऑफ अमेरिका का क्या करेगा, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे चाइना क्या कर रहा है वो शी जिनपिंग को मतलब है, अमेरिका क्या कर रहा है वो नहीं. एंड यू नो व्हाट द थिंग इज, कि शी जिनपिंग कितने ज्यादा अच्छे से इस ट्रिप को एंजॉय कर रहे हैं उनकी शक्ल से ही पता चल जाता है. सो व्हेनेवर ही इज अराउंड मिस्टर पुतिन, ही लाफ्स, ही इज लाइक कि ओके आई एम एंजॉयिंग दिस कॉन्वर्सेशन, ओके वी आर डूइंग समथिंग गुड. बट जब भी वो डोनाल्ड ट्रंप से मिलते हैं ना, उनकी शक्ल ऐसी बनी होती है कि कोई इस इंसान को लेके जाए, या फिर जिसको कॉन्स्टिपेशन हो जाती है ना, तो शी जिनपिंग की शक्ल वैसी बनी हुई थी कि ओ यू नो व्हाट, कोई तो मुझे यहां से लेके जाए, बस ये बंद करो यार, बंद करो, आई डोंट वांट टू बी विद दिस पर्सन इन द सेम रूम, लाइक क्या है ये इंसान, या उनकी शक्ल वैसे बनी हुई थी. वहां पे ट्रंप जो है वो एकदम पूरे वो जो होता ना सर्कस का मॉन्की, उसकी तरह बिहेव कर रहे थे कि ये लो ये भी दे देता हूं, ये भी दे देता हूं, ये भी ले लो, ये भी ले लो, वो भी ले लो. लेकिन मुझे पता है कि इसके बाद भी क्या होने वाला है. इसके बाद वही होगा, क्योंकि चाइना सरपास करने के लिए पूरी तरह से तैयार है अमेरिका को. सो ऐसे में अमेरिका नहीं चाहेगा, लेकिन ट्रंप जो है वो अब वो वाले लोगों में से हैं जो डूबने से पहले हाथ मारते हैं ना पानी में कि ओके किसी तरह जान बच जाए, वो वैसी वाली सिचुएशन है. और अमेरिका की हालत सच में वैसी ही है, आई एम टेलिंग यू दिस इज द ट्रूथ. जी हाँ, अब यहां पर बहुत कुछ हो रहा है, बट द थिंग इज की डबल स्टैंडर्ड्स जो है वो इस इंसान के कभी भी नहीं जाएंगे. मिस्टर ट्रंप के डबल स्टैंडर्ड्स कभी भी नहीं जाएंगे. B1 बॉम्बर उनके शी जिनपिंग के स्वागत के लिए उन्होंने निकाल दिया. जी हाँ, रेड कार्पेट उन्होंने बिछा दिया, बॉल ईगल जो है उनको भेंट कर दिया, ये सब कर दिया. लेकिन इसका फायदा क्या हुआ है? वेल, फायदा सिर्फ इतना हुआ है कि जो भी टैरिफ वगैरह वाली सिचुएशन चल रही थी वो 2 महीने आगे के लिए चल गई है, और दैट इज द ओनली फायदा दैट हैज हैपेंड. इसके अलावा और कुछ नहीं हुआ है. सो ट्रंप का क्या किया जाए? सबसे पहले तो इनकी डेफिनेटली जो सब्सक्रिप्शन है चैट जीपीटी की, वो कोई कैंसिल करो, क्योंकि वहीं से ये अपने ट्वीट्स बनाते हैं और ट्रुथ सोशल पर डाल देते हैं, वो एक चीज होनी चाहिए. और उसके बाद कोई इनको मैकडॉनल्ड दो यार, बहुत सारे, और इनको बोलो एक जगह पर बैठ के मैकडॉनल्ड खाओ, बस दैट्स इट. इससे ज्यादा कुछ मत किया करो, तुम्हारे बस का नहीं है बिटवा, तुम्हारे बस का नहीं है. जी हाँ, यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से.

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉग, केयरिंग विद डिग्निटी।
2: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270 35 पर, या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270 35। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270 35, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
3: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
4: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
3: Wow, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
4: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
5: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
6: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
7: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
6: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
7: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
6: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
7: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
8: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435, याद रहे 0400664435, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com।
9: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
10: जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निविया के साथ। दोस्तों वही मेटा के सीईओ की तो बल्ले बल्ले हो गई है, $25 बिलियन ऐड कर लिया उन्होंने अपनी नेटवर्थ में। जी हाँ, लोग सब अमीर हो रहे हैं, क्या हम लोग भी अमीर हो रहे हैं? वेल, ये क्वेश्चन हमें अपने आप से पूछना है। मैं आपसे नहीं पूछ रही हूँ, मैं खुद से पूछ रही हूँ, क्योंकि जिस अमाउंट ऑफ वेल्थ को ये ऐड कर रहे हैं अपने बटुए में, वो खतरनाक है। जी हाँ, तो मार्क जुकरबर्ग की एस्टिमेटेड वेल्थ जो है वो जंप कर गई है बाय $25 बिलियन इन जस्ट वन डे एज मेटा शेयर सर्ज नियरली 12%। जी हाँ, और ये जो है इस रैली ने पुश कर दिया उनकी एस्टिमेटेड फॉर्चून टू $253.6 बिलियन विद स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस इन मेटाज AI स्ट्रेटेजी प्लेइंग अ की रोल। उन्होंने एक म्यूज भी लॉन्च किया है, उन्होंने बताया है कि क्या क्या कर सकता है मेटा रेबन ग्लासेस क्या क्या कर सकते हैं, जिसको उन्होंने अभी लॉन्च किया है। और उसमें उन्होंने कहा है कि एक सिनेमा का, एक वर्क स्पेस का, एक कंसोल का, ऑल इन अ पेयर ऑफ ग्लासेस, ये सारा का सारा एक्सपीरियंस आपको मेटा रेबन ग्लासेस जो है वो देंगे। चलिए, ये तो मार्क जुकरबर्ग है और ऑफकोर्स ये काफी टाइम से अमीर है और ये यंगेस्ट अमीर बने थे, बिलियनियर्स में से एक थे जब ये बने थे बिलियनियर। लेकिन मैं बात करना चाहती हूँ यहाँ पर एक बिल्ली की जो बहुत अमीर है और मुझे लगता है कि अगर हमने इससे नहीं सीखा तो किसी से नहीं सीखा। मतलब मार्क जुकरबर्ग की बात होती है ना तो हम फिर भी कह सकते हैं कि यार ठीक है, मतलब यार मतलब उससे कहाँ कम्पीट कर सकते हैं, वैसे कैसे होगा। तो चलिए हम यहाँ पर एक बिल्ली से कम्पीट कर लेते हैं, क्योंकि एक कैट है, एक बिल्ली है जिसकी नेटवर्थ जो है वो 800 करोड़ के करीब है। मतलब आप सोचिए वो कितना ज्यादा हुआ। जी हाँ, From a shelter kitten to a global internet sensation. And guess what? It was a shelter kitten. जी हाँ, मतलब वो कोई hybrid cat नहीं थी जो कि बड़े ही लार्ज हवाब में, बड़े ही मतलब you know what luxuries में पैदा हुई और उसके बाद जो ऐसा कुछ हुआ। So ये नाला की कहानी है जो कि cat है और उसकी journey जो है एक powerful example of how the internet can transform an unexpected beginning into a massive global brand. जी हाँ, वो adopt किया गया उसे shelter से और नाला जो है इट वेंट ऑन टू बिकम वन ऑफ द मोस्ट रिकग्नाइजेबल कैट्स ऑनलाइन, बिल्डिंग अ ह्यूज फॉलोइंग अक्रॉस सोशल मीडिया। जी हाँ, 4.2 मिलियन जो है इससे ज्यादा फॉलोअर्स हैं इसके और इसकी जो वेल्थ है जैसे मैंने कहा कि 800 करोड़ से ज्यादा है। जी हाँ, मुझे लगता है कि मुझे इतना ही कहना काफी। आप लोग बोलोगे निविया शर्मा तुम फ्राइडे फ्राइडे कह रही थी और अब फ्राइडे वाली बात कर ही नहीं रही हो, तुम तो मंडे वाली बात कर रही हो। वेल वेल वेल, मैं इतना ही कहूंगी कि फ्राइडे के नशे में ये मत भूल जाइएगा कि हमको अपने सपनों को अचीव करना है। लेकिन हाँ, हमें अपने सपनों को अचीव करने में ही अपनी जिंदगी को नहीं बिता देना है, हमने अपने नियर एंड डियर वंस का ख्याल भी रखना है और अपनी खुशियों का भी ख्याल रखना है। सो हाँ, मतलब नाला द कैट और मार्क जुकरबर्ग कोई भी हो, लेकिन आपको इंस्पायर होने की जरूरत है और आपको नहीं, मुझे भी इंस्पायर होने की जरूरत है। अगर ये सब मेरी मम्मी सुन रही होंगी ना तो शील भी लाइक हाँ हाँ तुम दूसरों को इंस्पायर करो, खुद को मत करना। जी हाँ, यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ वक्त हो गया है हमारे फेवरेट सेगमेंट ओल्ड इज गोल्ड का। तो आई होप आपकी घड़ी ने भी वो वक्त बता दिया हो, दिखा दिया हो कि जाइए अब फरमाइश कर पुराने गानों की कीजिएगा, क्योंकि उसके बिना बात नहीं बनेगी। जी हाँ, सो ओल्ड इज गोल्ड सेगमेंट यानी कि पुराने गाने पुराने किस्से शुरू हो रहे हैं। आपको इंतजार किस चीज का है? कोई गाना है आपको बहुत ही पसंद जो पुराना है, तो दिस इज द परफेक्ट टाइम। और इसी के साथ जो गाना मैं आपको सुनाने वाली हूँ इस सेगमेंट की स्टार्टिंग में, वो बहुत ही खास है और बहुत ही चटपटा है। एंड आई थिंक इट्स फ्राइडे, तो दैट्स व्हाई आई वांटेड टू प्ले दिस सॉन्ग। एंड ये है बॉबी मूवी का गाना। जी हाँ, चटपटा है, बॉबी मूवी का गाना है, तो मुझे लगता है कि आपने गेस कर ही लिया होगा मैं कौन से गाने के बारे में बात कर रही हूँ। वेल, मैं आपको सुनाती हूँ ये, आप सुनिए और फिर उसके बाद हम और भी बहुत सारी बातें और किस्से आपको सुनाने वाले हैं।

चटपटे गानों के साथ। जी हाँ, अब आपको तो पता ही है कि ये मूवी जो है वो बहुत ही ज्यादा खास है। जी हाँ, ये मूवी है दो बहुत ही प्यारे और बहुत ही खूबसूरत स्टार्स की फिल्मी जर्नी की। जी हाँ, इसी मूवी से ऋषि कपूर और साथ में डिंपल कपाड़िया ने अपनी करियर की शुरुआत की थी। जी हाँ, मतलब ये शुरुआत जो है वो इतनी खास थी कि आप खुद सोचिए, राज कपूर डायरेक्ट कर रहे थे मूवी और राज कपूर मूवी मेकर थे, तो ये शुरुआत जो है वो ऑलरेडी हिट जो है वो हो गई थी। मतलब कि इस वक्त जो है वो ऋषि कपूर बहुत ही ज्यादा यंग थे और साथ में डिंपल कपाड़िया भी बहुत ही ज्यादा यंग थी। ऑफ कोर्स उन्होंने बहुत यंग होते होते ही राजेश खन्ना से, लेकिन ये उनकी स्टार्टिंग की मूवी थी, वो मूवी जिससे उन्होंने फिल्मी दुनिया में कदम रखा। अब आपको ये भी बता दूं कि डिंपल कपाड़िया खुद बहुत ही अमीर घराने से आती थी, बहुत बड़े घराने से आती थी, लेकिन यहाँ पर उन्होंने बिल्कुल किसी चीज के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने कहा कि मुझे एक्ट्रेस बनना है और मैं एक्ट्रेस बन के रहूंगी। ऑफकोर्स जब उन्होंने एक्ट्रेस बनने की सोची तो उन्हें शुरुआत में ही राज कपूर का साथ मिल गया। राज कपूर ने बॉबी को बनाया। इस मूवी के गाने बहुत ज्यादा हिट हुए, ये मूवी की स्टोरी बहुत ज्यादा हिट हुई। मतलब ये कल्ट फेवरेट मूवी है और कल्ट फेवरेट इसके गाने हैं। लेकिन जब आप इन दोनों को देखोगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, ये इन दोनों की पहली मूवी नहीं है, इससे पहले भी ये दोनों काम कर चुके हैं साथ में। जी हाँ, इसी के साथ एक और खूबसूरत सा गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

0: बिजली का बिल।
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.
0: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: 0802 or email me at royalindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM. शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे नीबा के साथ और सेगमेंट चल रहा है ओल्ड इज गोल्ड. दोस्तों आज एक बहुत ही जबरदस्त हीरो के कैरेक्टर में, विलन के कैरेक्टर में, दोनों में ही बहुत हिट हुए, उनका जन्मदिन है. ऑफकोर्स वो आज हमारे साथ इस दुनिया में नहीं है, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट फिरोज खान. नाउ व्हेनेवर वी टॉक अबाउट फिरोज खान, उस वक्त की अभिनेत्रियों के मुंह से, उनके जुबान से एक ही चीज निकलती थी कि फिरोज खान वॉज वेरी वेरी वेरी हैंडसम. जी हाँ, लेकिन जो लोग नहीं जानते थे वो ये कि फिरोज खान जितने गुड लुकिंग थे उतने अच्छे एक्टर भी थे, वो भी लोग जानते थे, लेकिन वो उतने ही ज्यादा डेडिकेटेड अपनी फिल्म मेकिंग के लिए भी थे. जी हाँ, अपनी एक फिल्म के लिए उन्होंने लिटरली अपनी चमकीली स्वैगी लग्जरी गाड़ी को वहां पर लगा दिया. जी हाँ, वहां पर ये किस्सा जो है वो हेमा मालिनी ने सुनाया है कि कैसे फिरोज खान जो है वो अपनी फिल्म मेकिंग के लिए इतने ज्यादा सीरियस थे. ही वॉज सो सीरियस अबाउट इट कि वो अपनी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे और उन्हें क्लाइमैक्स के लिए, जी हाँ क्लाइमैक्स के लिए, एक एक्सीडेंट करवाना था एक स्वैंकी सी कार का. जी हाँ, और वो सीन था कि अगर वो नहीं भी चलता और अगर नहीं भी डालते तो चल जाता, पर फिरोज खान ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, मुझे एक बढ़िया सा क्लाइमैक्स चाहिए और एक स्वैंकी सी गाड़ी जो है, अगर वो ऐसे एक्सीडेंट होगा उसका, अगर वो एकदम चकनाचूर होगी तो बहुत ही अच्छा सीन यहां पर बनेगा. वो खुद ही उस मूवी को बना रहे थे और हेमा मालिनी भी उसका पार्ट थी. जी हाँ, और ऐसे में किसी और गाड़ी का इस्तेमाल करने के बजाय वो अपनी लग्जरी कार को वहां लाते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं. जी हाँ, वो सारा का सारा सीन शूट करते हैं और जब वो घर लाते हैं तो उनके बेटे फरदीन खान उसे देखकर बोलते हैं कि ओ माय गॉड, ये क्या हुआ. जी हाँ, और उसी शो के दौरान जहां पर हेमा मालिनी इस किस्से के बारे में बता रही थी, वहां पर फरदीन खान भी बैठे हुए थे. वो कहते हैं कि जी हाँ, आप सही हो, मैं उस दिन घर पर ही था और जब वो गाड़ी वापस आई सेट से और मैंने उसे देखा तो मुझे इतना ज्यादा बुरा लगा, मुझे इतना ज्यादा रोना आया क्योंकि मुझे वो गाड़ी बहुत ज्यादा अच्छी लगती थी, लेकिन मेरे पापा ने अपनी फिल्म मेकिंग के लिए उसका बुरा हाल कर दिया था. तो देखिए, मतलब एक ऐसा एक्टर जो जबरदस्त एक्टर था ही, चाहे फिर वो एक्टर हीरो का हो या फिर विलन का हो, दोनों ही तरह की एक्टिंग जबरदस्त की, लेकिन फिल्म मेकिंग के लिए इतनी ज्यादा दीवानियत कि कौन सी चीज अपनी है, कौन सी चीज शूट के लिए आई है, we are gonna use it and we are gonna make a great great film. जी हाँ, so फिरोज खान साहब का है आज जन्मदिन और definitely उनके looks की तो बात हमेशा से करती रही है. so whenever it comes to the good looking heroes, फिरोज खान का नाम भी बहुत ऊपर लिया जाता है और बहुत सारी अभिनेत्रियों ने इनफैक्ट उनका नाम लिया है. अब क्योंकि उन्हीं का नाम यहाँ पर ले रहे हैं तो यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत गाना उन्हीं की मूवी का मैं प्ले करने वाली हूँ और ये डेफिनेटली आप अपनी फीमेल फ्रेंड्स या अपनी पार्टनर की तारीफ में भी गा सकते हो.

0: जी हाँ दोस्तों, और इसके साथ हम जाने का वक्त हो गया है। आखिरी गाना भी बहुत खास है क्योंकि ये एक फरमाइशी गीत है। फरमाइश आई है हमारे बहुत ही खास लिसनर विशाल जी की तरफ से। गाने का नाम है अच्छा तो हम चलते हैं। जी हाँ, अच्छा तो हम चलते हैं। और ये गाना जो है अगेन फ्राइडे की फीलिंग को आगे बढ़ा रहा है। और इनफैक्ट ये गाना जो है वो सबसे बढ़िया है इस प्रोग्राम को एंड करने के लिए, क्योंकि बात हो रही है अच्छा तो हम चलते हैं और यहाँ भी यही चल रहा है, अच्छा तो हम भी चलते हैं। सो थैंक यू सो मच विशाल जी, हमेशा की तरह जबरदस्त फरमाइशें करने के लिए, एकदम थीम के साथ जाने के लिए, वो भी एक बड़ी बात है। जी हाँ, ऐसे ही प्यार देते रहिए, ऐसे ही सुनते रहिए। ये रहा आपका गाना और इसी के साथ आप सबसे विदा लेते हैं। हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, खाते रहिए, सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी 107.1 AM। मुलाकात होगी कल टॉप 10 हॉट 10 में। बाय, सी यू, टाटा।
1: फिर कब मिलोगे?
2: जब तुम कहोगे।
1: जुमेरात को?
2: हाँ हाँ, आधी रात को।
1: कहाँ?

0: दिस इज अमिताभ बच्चन
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
2: हाय गाइस, आई एम मनमीत, वन ऑफ द मीत ब्रदर्स, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
3: हाय, दिस इज सलमान खान और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
4: हाय, दिस इज दीपिका पादुकोण और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
5: टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज आलिया।
6: हाय, मैं हूं तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी
7: से। टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज शाहरुख खान।
8: हाय, दिस इज अजय देवगन और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
9: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन, au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: सासों की माला पे सिमरूं मैं।
3: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जानिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम।
4: ओ सिया राम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना।
3: टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए, ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए। इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: भाई, मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
3: तो ओम्स ऑर्ग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
2: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
3: अरे, ओम्स ऑर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
2: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
3: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
2: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
3: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448381360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470631801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओम्स ऑर्ग, केयरिंग विद डिग्निटी।
4: करें

0: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355, या फिर ईमेल करे permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
1: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
2: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
1: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
2: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
3: लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से। और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर। याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement.

0: फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलनगाबा। ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। मैं हूं निव्या शर्मा और स्वागत है आपका आज के न्यूज बुलेटिन में। सबसे पहले शुरुआत हमेशा की तरह ब्रिस्बेन की कुछ खास खबरों के साथ। बेलबर्न पार्क में संदिग्ध मकान आग दुर्घटना और पुलिस जांच। जी हां, रुक करते हैं सबसे पहले ब्रिस्बेन का। वेस्ट ब्रिस्बेन के बेलबर्न पार्क इलाके में एक दो मंजिला मकान में भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड के पहुंचने के बाद वहां एक झुलसा हुआ शव मिला है। आसपास पेट्रोल की गंध की शिकायतों के बाद क्वींसलैंड पुलिस ने इसे संदिग्ध मामला मानकर क्राइम सीन घोषित कर जांच शुरू कर दी है। वहीं 2032 ब्रिस्बेन ओलंपिक्स और बुजुर्गों की स्वास्थ्य देखभाल की योजना। जी हां, 2032 ब्रिस्बेन ओलंपिक्स की तैयारियों के बीच क्वींसलैंड सरकार ने एक नया हेल्थ प्लान पेश किया है। अस्पतालों में बुजुर्ग मरीजों के लंबे समय तक रुकने और डिमेंशिया के बढ़ते मामलों से निपटने के लिए ओलंपिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ हेल्थ केयर सुविधाओं को बेहतर बनाने पर काम शुरू कर दिया गया है। वहीं AFL ग्रैंड फाइनल से पहले ब्रिस्बेन लायंस के कोच क्रिस फागन चर्चा में। जी हाँ, स्पोर्ट्स लवर्स के लिए ब्रिस्बेन लायंस से जुड़ी खबर है। AFL ग्रैंड फाइनल से ठीक पहले कोच क्रिस फागन और पूर्व दिग्गज ली मैथ्यूज के रिश्तों पर एक खास फीचर सामने आया है। लायंस के इतिहास में सबसे ज्यादा मैच जीतने वाले कोच फागन इस हफ्ते अपनी टीम को एक और ऐतिहासिक जीत दिलाने के लिए पूरी तरह तैयार है। वहीं 2026 क्वींसलैंड रेजिलिएंट ऑस्ट्रेलिया अवार्ड्स का ऐलान। जी हां, आपदा प्रबंधन और बाढ़ से बचाव के बेहतर उपायों के लिए ब्रिस्बेन के पार्लियामेंट हाउस में 2026 क्वींसलैंड रेजिलिएंट ऑस्ट्रेलिया अवार्ड्स दिए गए हैं। इसमें स्कूलों, दिव्यांग संगठनों और स्थानीय काउंसिलों को प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के बेहतरीन प्रोजेक्ट्स के लिए सम्मानित किया जाएगा। वहीं ब्रिस्बेन पोर्ट और समुद्री व्यापार को बढ़ावा देने के लिए नई पहल। जी हां, ऑस्ट्रेलिया सरकार ने इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन IMO काउंसिल में अपनी सीट के लिए फिर से दावेदारी की है। ब्रिस्बेन पोर्ट ऑस्ट्रेलिया के बड़े व्यापारिक केंद्रों में से एक है और इस कदम से क्वींसलैंड के समुद्री व्यापार, आयात निर्यात और जहाजरानी सुरक्षा को काफी मजबूती मिलेगी। इसी के साथ अब जरा चलते हैं भारत की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की तरफ। सबसे पहले सिक्किम में भारी बारिश से रिम्बी गांव में भूस्खलन। जी हां, शुरुआत करते हैं देश की पहली बड़ी खबर से। सिक्किम के वेस्ट जिले में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से रिम्बी गांव में एक बड़ा भूस्खलन हुआ है। वहीं खाद्य तेलों पर कस्टम ड्यूटी घटी, त्योहारों से पहले राहत। आने वाले त्योहारों के सीजन से ठीक पहले केंद्र सरकार ने आम जनता को एक बड़ी राहत दी है। सरकार ने पाम, सोयाबीन और सनफ्लावर ऑयल पर लगने वाली बेसिक कस्टम ड्यूटी यानी आयात शुल्क में कटौती की है। वहीं गणेश विसर्जन के चलते हैदराबाद और तेलंगाना के कई इलाकों में छुट्टी। जी हां, तेलंगाना में गणेश विसर्जन की विशाल शोभा यात्रा के चलते आज हैदराबाद, सिकंदराबाद और आसपास के जिलों में स्कूल, कॉलेज और सरकारी दफ्तर बंद रखे गए हैं। इसके साथ असम में बनेगी दूसरी सराघाट रेल कम रोड ब्रिज। जी हां, पूर्वोत्तर के यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर है। रेल मंत्रालय ने असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर दूसरी सराघाट रेल कम रोड ब्रिज के निर्माण को हरी झंडी दे दी है। वहीं नकली पनीर पर बैन लगाने का ड्राफ्ट प्रस्ताव। जी हां, खाद्य सुरक्षा संस्था FSSAI ने देश भर में नकली या एनालॉग पनीर की बिक्री पर रोक लगाने के लिए नए ड्राफ्ट नियम पेश किए हैं। कई जगहों पर दूध के बजाय वनस्पति तेलों से बने पनीर को असली बताकर बेचा जा रहा था। इसी के साथ नीट PG 2026 का रिजल्ट जारी। मेडिकल के छात्रों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशंस ने नीट PG 2026 का परीक्षा परिणाम अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया है। इसी के साथ अब जरा चलते हैं सीधा अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र UNGA में नेपाल ने रखा हिमालयन क्लाइमेट मैकेनिज्म का प्रस्ताव। दुनिया की खबर की बात करें तो न्यूयॉर्क में चल रही 81st संयुक्त राष्ट्र महासभा में नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने पर्यावरण संकट पर चिंता जताई। उन्होंने भारत, चीन और नेपाल को मिलकर एक हिमालयन क्लाइमेट रेजिस्टेंस मैकेनिज्म बनाने का प्रस्ताव रखा।
वहीं अमेरिका में मीडिया संस्थानों पर लगा प्रतिबंध जज ने हटाया। जी हां, अमेरिका की एक संघीय अदालत ने व्हाइट हाउस द्वारा CNN, MS नाउ और पॉलिटिको जैसे बड़े मीडिया संस्थानों के प्रवेश पर लगाए गए प्रतिबंधों को असंवैधानिक करार दिया है। वहीं अमेरिका और ईरान के बीच हॉर्मुज स्ट्रेट पर बातचीत, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति से जुड़ी एक बड़ी अपडेट सामने आई है। अमेरिका और ईरान ने संयुक्त राष्ट्र बैठक के दौरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में नौकायन, नाकाबंदी हटाने और चरणबद्ध समझौता करने पर चर्चा शुरू की है। वहीं अमेरिका और चीन ने ट्रेड वॉर रोकने की समय सीमा बढ़ाई। जी हां, अमेरिका और चीन के बीच जारी व्यापारिक तनाव में थोड़ी राहत देखी गई है। वॉशिंगटन में हुई उच्च स्तरीय बैठक के बाद दोनों देशों ने ट्रेड वॉर पर लगाए गए युद्ध विराम को 2 महीने के लिए और आगे बढ़ा दिया है। वहीं एंथ्रोपिक की रिकॉर्ड $11.6 बिलियन की AI चिप डील। जी हां, टेक्नोलॉजी की दुनिया से खबर यह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी एंथ्रोपिक ने एकामई के साथ $11.6 अरब की विशाल 7 वर्षीय डील की है। वहीं यूक्रेन संकट पर संयुक्त राष्ट्र में जेलेंस्की की अपील। संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने आरोप लगाया कि रूस युद्ध में कई देशों के नागरिकों का इस्तेमाल कर रहा है। इसी के साथ अब जरा चलते हैं सीधा खेल समाचारों की तरफ। जी हां, एशियन गेम्स 2026 चीन ने पार किया 100 मेडल का आंकड़ा। खेलों की दुनिया में इस वक्त एशियन गेम्स की धूम मची है। जी हां, छठे दिन चीन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 101 मेडल हासिल कर लिए हैं। वहीं एशियन गेम 2026 शूटिंग में भारत की बड़ी उम्मीदें। आज भारत के लिए शूटिंग में पदकों की बारिश हो सकती है। वहीं ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, रुद्रांश पाटिल और नीरज कुमार की तिकड़ी मेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन टीम इवेंट के फाइनल में दाव लगा रही है। इसी के साथ एशियन गेम्स में भारतीय कबड्डी टीमें सेमीफाइनल में। वहीं ईरानी एथलीट की अनूठी सफलता, एशियन गेम 2026 में एक बेहद प्रेरणादायक खबर सामने आई है। ईरान की रोइंग खिलाड़ी किमिया जारेई, जिन्होंने अमेरिका ईरान तनाव के बीच 45 दिनों तक घर में अकेले बिना कोच के प्रैक्टिस की थी, उन्होंने महिला लाइट वेट डबल स्कल स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीत लिया है। इसी के साथ महिला हॉकी में भारत बनाम जापान का अहम मुकाबला। महिला हॉकी में आज भारत का सामना जापान से हो रहा है। पूल बी के इस कड़े मुकाबले को जीतकर भारतीय महिला टीम सेमीफाइनल में अपनी जगह मजबूत करनी चाहेगी। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अब आपसे कल। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वान।

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding. And I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602. 0411-022-602. Or email me at royleendrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट, फ्री ऑफ चार्ज। रिंग करे प्रकाश मेनन को। Phone 3630-5438, 3630-5438, या मोबाइल 0415-952-660, 0415-952-660।
2: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
3: Yes baby, but no compromise with quality and health. हम जाएंगे सिर्फ MC's Indian and Island Food.
2: ऐसा क्या खास है वहाँ?
3: सब कुछ, quality spices, lentils, rice, flour और frozen sabzi from Fiji and India. Brisbane के best Indian butcher supplying farm fresh goat, lamb, chicken and duck और fresh local produce भी रखते हैं. साथ ही kitchenware and disposable plates की large range किसी भी function के लिए.
2: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
3: MC's Indian and Island Food, serving Brisbane since 1999. Open 7 days. Find us on Facebook or visit website mcsfoods.com.au. 1/268 Kingston Road, Slacks Creek, phone number 3804-3818. That's 3804-3818.
4: नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर देते हां। असी होर भी वर डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉय ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानी स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन, जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां, इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वर डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानी स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन, जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां, इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन, तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो, जां 132 ANT, यानी के 132-268 उते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: Associates ਦੇ lawyers ਦਾ vast experience ਆ and the best point they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks a ton Veere, I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Anuj, koi achha sa lawyer suggest karo na. ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
3: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
2: अरे वाह, इनका पता बताना।
3: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.

पहले था कबूतर अब है ट्विटर, पहले थी बुक अब है फेसबुक, पहले था टेलीग्राम अब है इंस्टाग्राम, पहले थी जादू की जापी अब है वीडियो कॉल पे पप्पी। यही सोच कर पिछला और अगला

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Madhvit from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
4: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
6: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane
7: से. To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
8: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.
9: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है. एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है. ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है. यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है. लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है. यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं.

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन, au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: सासों की माला पे सिमरूं मैं।
3: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जानिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम।
4: ओ सिया राम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना।
3: टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए, ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: भाई, मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
3: तो ओम्स ऑर्ग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
2: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
3: अरे, ओम्स ऑर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
2: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
3: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
2: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
3: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448381360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470631801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओम्स ऑर्ग, केयरिंग विद डिग्निटी।

0: suku, suku.
1: Ay, ay, ya, karu mai kya, suku, suku. Ay,

अय्या करूं मैं क्या सुकू सुकू, खो गया दिल मेरा सुकू सुकू।

0: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
1: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
2: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं, दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
1: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
2: एट शॉप 9B सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल prince jewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435, याद रहे 0400664435, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.

दुनिया के किसी भी कोने में रहा, तुमसे कितना भी फासला रहा, यकीन मानो बचपन से आज तक हर पल हर मोड़ तुम्हें साथ पाया। समझ नहीं आता इस रिश्ते को क्या कहूं यार, तुम कहो तो आज इसे एक नाम दूं।

0: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्टवेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज rani-creations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

मैं कुछ भी कर लूं, तुम कभी मुझसे मोहब्बत नहीं करना चाहती, और तुम कुछ भी कर लो, मैं कभी तुमसे नफरत नहीं कर सकता।

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding. And I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602. 0411-022-602. Or email me at royleendrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।

0: Atari. Madam, I am your only Adam.
1: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
2: Yes baby, but no compromise with quality and health. हम जाएंगे सिर्फ MC's Indian and Island Food.
1: ऐसा क्या खास है वहाँ?
2: सब कुछ, quality spices, lentils, rice, flour और frozen सब्जी from Fiji and India. Brisbane के best Indian butcher supplying farm fresh goat, lamb, chicken and duck और fresh local produce भी रखते हैं. साथ ही kitchenware and disposable plates की large range किसी भी function के लिए.
1: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो.
2: MC's Indian and Island Food, serving Brisbane since 1999. Open 7 days. Find us on Facebook or visit website mcsfoods.com.au. 1 by 268 Kingston Road, Slacks Creek, phone number 3804-3818. That's 3804-3818.
3: क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अगे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अगे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो बिस्वानी 101.1 ते जी। आप चे संदेश अलग दिनाल से बने हुए। देखो भारतीय सिनेमा सिर्फ बॉलीवुड की चकाचौंध तक सीमित नहीं रहा। पिछले कुछ साल खेतरी भाषावां विच बनिया कई फिल्मां ने अंतरराष्ट्रीय मंचां ते भारत का नाम रोशन किया। BFTA कांस वेनिस ते ऑस्कर वर्गे बहुत सारे अवार्ड फंक्शंस विच भारतीय फिल्मां ने अपनी स्टोरी टैलिंग ते संवेदनशीलता नाल दुनिया नूं प्रभावित किया है। तां मैं सोचा कि क्यों ना तुहानूं उन्हां फिल्मां बारे दसां जिन्हां ने विदेश विच वाही बटोरी हैगी है। शायद बहुतियां बारे थोनू पता होना, बहुतियां बारे नहीं पता होना क्योंकि अदर लैंग्वेज है तो अदर लैंग्वेज जी आती हैगी है तो उस बारे सानू शॉर्ट मूवीज बारे ज्यादा पता नहीं हुंदा। तो चल मैं तुहानू दस्सदी हां, जे थोनू समझ आती हुई तो जरूर देखियो क्योंकि फिल्मां बहुत ज्यादा वधिया है।

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
3: यार, I'm so worried. Actually, want an experienced lawyer to handle my case.
2: मेरी advice है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का vast experience है और law की entry cases को handle करने में उनकी expertise है. Criminal law, domestic offence, traffic drug offence में 12 साल से ज्यादा का rich experience. और तो और conveyance, family law, immigration laws में भी भारद्वाज and associates के lawyers का vast experience है. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
3: Thanks, Atanya. I'm so relaxed to hear that.
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

हाँ जी जी अनु जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो सोनी वन सर वन एम ते जी आर जे संदेश अलग दिन बने हुए हूँ। इन्होंने फिल्मों के जड़िया पूरी दुनिया के छाइया हुई ने, तो ये जी लिस्ट मैं फरोल रही हूँ, तो इस सब तो पहला नाम जो आता है वह हैगा बूंग। जी हाँ, ये लक्ष्मी प्रिया देवी के निर्देशन बनी मणिपुरी फिल्म हैगी है बूंग है फिल्म का नाम। तो बूंग ने ना हाल ही बाफ्टा अवार्ड 2026 बेस्ट चिल्ड्रन एंड फैमिली फिल्म का अवार्ड जीत के ना इतिहास रच दिता है। फरहान अख्तर रितेश सिद्धवानी दे एक्सल एंटरटेनमेंट द्वारा प्रोड्यूस इस फिल्म एक छोटे मुंडे की कहानी है जो अपने पिता की तलाश विच निकलता है। फिल्म मणिपुर जाति तनाव ते सीमा दीआं चुनौतियां नूं एक बच्चे के नजरिए दिखाती हैगी है, जो बहुत वधिया लगती है क्योंकि जेड़ी चीज बच्चे के नजरिए दिखाई जाती है कि ना वो नो डाउट कमाल दी हुंदी है।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ ममा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन ममा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।
3: हाय गाइस, आई एम मनमीत, वन ऑफ द मीत ब्रदर्स, एंड आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।
4: हाय, दिस इज सलमान खान, और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।
5: हाय, दिस इज दीपिका पादुकोण, और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।
6: टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिस्वानी, दिस इज आलिया।
7: हाय, मैं हूं तुलसी कुमार, और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी से।
8: टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिस्वानी, दिस इज शाहरुख खान।
9: हाय, दिस इज अजय देवगन, और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।
10: सांसों की माला पे सिमरूं मैं।
11: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जानिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स, एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम।
12: उसी आराम की गली में

हाँ जी, वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे ते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रिस्वानी वन सर वन एम ते जी आर चे संदेश चौलक दिनाल से बने हुए हो। अगली फिल्म थोड़ी जी पिछे जाने हैं 2015 दे विच। वो फिल्म का नाम हैगा मसान, नीरज गायवान दी डेब्यू फिल्म। वाराणसी विच दो कहानियां, देवी जिस जो रिचा चड्ढा बने से ते दीपक जो विकी कौशल बने से दी सामाजिक दबाव ते मुक्ति दी खोज ये है की है। 2015 दे कांस फिल्म फेस्टिवल विच दो पुरस्कार जीते जिस विच FIPRESCI अवार्ड्स अते प्रोमिसिंग फ्यूचर प्राइज सीगा। वाराणसी दी उथे जमीन ते बनी इस फिल्म विच रिचा चड्ढा ते विकी कौशल ने यादगार एक्टिंग की थी है। कि विकी कौशल दी किस्मत इस फिल्म दे नाल चमकी सी।

0: करते हाँ हीरो की तरह।
1: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं, अनऑर्गेनाइज हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
2: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
1: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
2: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए, ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
3: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार, हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
4: तो ओम्स ऑर्ग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
3: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
4: अरे ओम्स ऑर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
3: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
4: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
3: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
4: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448381360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470631801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
5: ओम्सॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

0: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट।
1: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
2: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
1: Wow, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व, पर एड्रेस?
2: एट शॉप 9B सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
3: ओनली गॉड कैन जज मी, दैट राइट, ओनली गॉड बेबी, नोबडी एल्स।
4: ਮੇਰੇ ਰਾਹਾਂ ਦੀ ਮਕਾਮਾਂ ਨਾਲ ਪੱਕ ਠੱਕ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: Beyond what you see, Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate. First issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
5: के आलम में नशा हो जब तेरे रुखसार देखूं, खुदा ने जब तराशा होगा वो असरार देखूं, निगाहों में बसा है इस कदर ये नूर तेरा, कुर्बान हर दफा हूं तुझको जितनी बार देखूं।

0: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।
1: कह दू तुम्हें
2: हाँ
1: या चुप रहूं
2: ना,
1: दिल में मेरे आज क्या है
2: क्या है।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता। लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
1: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
2: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
1: ऐसा क्या खास है वहाँ?
2: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
1: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
2: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटर्नी, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
4: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
6: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane से.
7: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
8: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.
9: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है. एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है. ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है. यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है. लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है. यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं.

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: सासों की माला पे सिमरूं मैं।
3: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जानिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम। टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premierTickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्विदीज फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।

0: ऐ मेरी हमरक्स मुझको थाम ले, जिंदगी से भाग कर आया हूं।
1: बारिश हो रही है, ये बारिश ना होती तो भी ना आती।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार, हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
3: तो ओम्स ऑर्ग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
2: हाँ लेकिन भरोसा कैसे करूं?
3: अरे ओम्स ऑर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
2: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
3: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
2: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
3: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448381360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470631801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
4: ओम्सॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्म आके गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी। कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे, मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था।

0: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270 35 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270 35। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270 35, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
1: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहां से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
2: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहां अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
1: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
2: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल prince jewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance. Owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are. Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.

0: फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज RaniCreations.com, द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे, रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding. And I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602. 0411-022-602. Or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करे प्रकाश मेनन को। Phone 3630-5438, 3630-5438, या mobile 0415-952-660, 0415-952-660.

0: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वड डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विले शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

की से जो बरसों पर झूठे को आराम न आए, लेकिन सच्चे को पल भर में कांटों पर भी नींद आ जाए। ऐ दोस्त, ऐ दोस्त, ऐ दोस्त।

कर उसका साथ दिया, गिरते को यहाँ किसने थामा, किसने उसको हार दिया। ए दोस्त ए दोस्त ए दोस्त।

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience aa. Te law di entry cases nu handle karan ji o expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience aa. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Anuj, koi achha sa lawyer suggest karo na. Aisa jo meri sari baat dhang se sune, samjhe, aur phir mere tarike se mujhe samjhaye.
3: Arshad Lawyers hai tumhari problem ka solution. कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
2: अरे वाह, इनका पता बताना।
3: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। Call Arshad from Arshad Lawyers now on 0420-933-171. Website www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनियर, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before.

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan.
4: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
6: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
7: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane
8: से. To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
9: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.
10: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है. एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है. ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है. यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है. लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है. यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं.

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: सासों की माला पे सिमरूं मैं।
3: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जानिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज्ड बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम।
4: ओ सिया राम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना।
3: टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार, हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
3: तो ओम्स ऑर्ग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
2: हाँ लेकिन भरोसा कैसे करूं?
3: अरे ओम्स ऑर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
2: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
3: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
2: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
3: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448381360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470631801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओम्सॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

0: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270 रिमेम्बर द नंबर इज 04111270 या फिर ईमेल करे permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
1: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
2: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
1: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
2: एट शॉप 9B सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड सनी बैंक हिल्स क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365 दैट्स 3273-7365 और ईमेल prince jewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435, याद रहे 0400664435, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q plate sales, inquire.

0: फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्टवेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करे प्रकाश मेनन को। Phone 3630-5438, 3630-5438, या मोबाइल 0415-952-660, 0415-952-660.

0: हनी ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वड डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

वहमो गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया उनको हमसे प्यार है।

न बदला में न बदला।

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Madhvi from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan.
4: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
6: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
7: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane से.
8: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
9: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.
10: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है. एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है. ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है. यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है. लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है. यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं.

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: सासों की माला पे सिमरूं मैं।
3: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जानिंग का अमेजिंग

अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए. म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस. फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शांडिला थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शांडिला. सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है. ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं. हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा. प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट. निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम. Tickets on sale now at premiertickets.co. Sponsorships, partnerships और ज्यादा जानकारी के लिए contact Prerna on 0430228009. Proudly sponsored by Aussies Migration and Education and powered by Swadesh Foods. Come for the music, stay for the purpose, leave inspired.

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्सऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
1: बिल्कुल, ओम्सऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए। ओम्सऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्सऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: भाई, मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
3: तो ओम्सऑर्ग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
2: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
3: अरे, ओम्सऑर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
2: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा।
3: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
2: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
3: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448381360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470631801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
4: ओम्सऑर्ग, केयरिंग विद डिग्निटी।

0: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
1: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहां से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
2: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहां अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस। साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
1: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
2: एट शॉप 9B सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड सनी बैंक हिल्स क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365 दैट्स 3273-7365 और ईमेल prince jewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
5: रेडियो 79.1 जिसके द्वारा आप हर रोज हमारे हिंदुस्तानी कार्यक्रम को सुनते हैं। याद रहे हमारा टेलीफोन नंबर है 3279-1701।

प्रिय श्रोतागण, परमानंद का प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल और सलाम अलैकुम। आपका हार्दिक स्वागत मैं कर रहा हूँ संगीत सरगम नमत प्रोग्राम में। आज के कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण इस प्रकार है। मौसम की खबर से प्रोग्राम का शुरुआत करूंगा मैं, उसके बाद स्पॉन्सर्ड कार्यक्रम 7:15 बजे आज सुबह का सितारा, 8 से लेकर 8:15 बजे तक रानी क्रिएशंस का साप्ताहिक स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम, नए गीतों के साथ ठीक 8:30 बजे संगीत सरगम नामक कार्यक्रम।

जी मित्रों, हम आगे बढ़ते हुए चलें, मौसम की खबर सुनते हैं। आज के मौसम की खबरों में जो हमें मौसमी दफ्तर ब्रिस्बेन ने प्रदान किए हैं, उसके अनुसार आज का मौसम कुछ इस प्रकार रहेगा। आप देख रहे होंगे कि इस समय अगर सुबह आप उठ चुके हैं तो आकाश पर घटा छाई हुई है और आज ज्यादातर धूप निकलेगी ब्रिस्बेन में और ठंड है 23 रहेगा ब्रिस्बेन में और दिन में रात्रि को 12, हवा का रफ्तार 13, 5:33 पर सूर्य उदय हुआ है और 6:45 सूर्य अस्त होगा। इप्सविच में बादल घिरे रहेंगे और 25 रहेगा दिन में रात्रि को 10, हवा का रफ्तार 11 और सनशाइन कोस्ट में धूप निकलेगी 23 दिन में रात्रि को 15, हवा का रफ्तार 16 और गोल्ड कोस्ट में हल्की बारिश होगी 23 दिन में रात्रि को 13, हवा का रफ्तार 11। नैनी में ज्यादातर आकाश पर घटा छाई हुई है 26 है दिन में रात्रि को 21, हवा का रफ्तार 24 और 5:55 पर सूर्य उदय हुआ है 6:06 पर सूर्य अस्त होगा। लंबा समय बादल घिरे हुए हैं और 27 दिन में रात्रि को 22, हवा का रफ्तार 23। सुबह में जब घबरा जाओगे सुनकर तापमान कितना, आकाश पर घटा छाई है 22 और 21 रात को 27, हवा का रफ्तार। वेलिंगटन में ज्यादातर धूप निकलेगी 13 दिन में रात्रि को 7:35 विंड स्पीड और ओकलैंड में हल्की बारिश होने के साथ साथ 14 दिन में रात्रि को 12, हवा का रफ्तार 26 और 6:05 पर सूर्य उदय हुआ है 6:20 पर सूर्य अस्त होगा। मुंबई में बादल घिरे रहेंगे 32 दिन में रात्रि को 27, हवा का रफ्तार 18। अमृतसर में धूप निकलेगी 33 दिन में रात्रि को 23, हवा का रफ्तार 11। नई दिल्ली में आकाश पर घटा छाई रहेगी और 31 रहेगा दिन में रात्रि को 23, हवा का रफ्तार 14 और 6:11 पर सूर्य उदय होगा और 6:13 पर सूर्य अस्त होगा। तो ये थे कुछ स्थानीय तथा अंतर्राष्ट्रीय केंद्रों के मौसम की खबर। और मित्रों, रेडियो ब्रिस्बेन आपकी अपनी पहचान, आप सुन रहे हैं, मैं हूं परमानंद संगीत सरगम नामक कार्यक्रम के साथ। और आज का दिन बहुत बढ़िया है और आपको बतला दें कि हमारा स्टूडियो का नंबर है 3279-1701 और साथ में आपको ये भी कह दें कि आज बच्चों का छुट्टी भी है, आप जानते हैं, और खूबसूरत मौसम है। ऐसे प्यारे मौसम में हम आपको साथ लेकर चल रहे हैं, तो चलें। आज सोचा मैंने क्यों नहीं, आज क्योंकि आज शनिवार है, हनुमान जी का दिन है, तो हम चलते हैं एक हनुमान जी का गीत से कि राम जी ने कलयुग हमें दिया है, ऐसे ही गीत के बोल हैं कुछ, और इसे हम आपके सेवा में पेश करेंगे। देखते हैं, ढूंढ रहा हूं मैं, जैसे मिल जाए इसे सुनाऊंगा। फिलहाल चलते हैं एक विज्ञापन ले लेते हैं, विज्ञापन के बाद हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। चले एक खबर सुन लें पहले और फिर हम आगे चलते हैं।

0: May I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding. And I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602. 0411-022-602. Or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: जमी तो ये था पहला विज्ञापन, और पहला विज्ञापन के बाद चलें जो धार्मिक गीत का मैं सोच रहा था। पिछले सप्ताह इसका फरमाइश आया था तो मैं बजा नहीं पाया था, लेकिन अब चलें सुनते हैं उस मजेदार भजन या गीत जो भी कहें आप। उम्मीद कर रहा हूँ आपको अच्छा लगेगा।
2: श्री हनुमान जी महाराज की भक्ति का ये वर्णन किया गया है। एक सच्चा भक्त हनुमान जी के चरणों में कह रहा है,

0: तो मित्रों, ये जो भजन आप सुन रहे थे, शरद शर्मा जी आपको सुना रहे थे, और इसी के साथ साथ लगभग 7:15 बज रहे हैं। मैं हूँ परमानंद, आप संगीत सरगम नामक कार्यक्रम को सुन रहे हैं। और आपको बता दूं कि आज तारीख है 26 तारीख का दिन है, क्या बात है, शनिवार है हमारे ब्रिजबेन में, और ना तो ज़्यादा गर्मी ना ठंडे, 15 डिग्री समय तापमान है हमारे इलाके में। तो चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो गीत है, इसे अनिल कपूर जी पर्दे पर और अनीशा कोइराला जी पर्दे पर, कुमार सानू साहब इसे अदा कर रहे हैं। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा,
1: मैंने उसे देखा तो ऐसा लगा जैसे
2: जैसे क्या

जी मित्रों, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, 1942 आई लव स्टोरी से इस पिक्चर को लिया गया है, फिल्म के गीत को लिया गया था, और उम्मीद कर रहा हूँ आपको अच्छा लगा होगा। और आप रेडियो ब्रिजबानी आपकी अपनी पहचान सुन रहे हैं, मैं हूँ परमानंद, संगीत सरगम प्रोग्राम आप सुन रहे हैं।

0: यह मित्रों, तेरे आंखों में मुझे प्यार नजर आता, आप सुन रहे थे। और चलिए आगे बढ़ते हैं, एक खबर ले लेते हैं। एमसीज इंडियन एंड आयरलैंड फूड का खबर है, उसके बाद एक और गीत।
1: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
2: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ एमसीज इंडियन एंड आयरलैंड फूड।
1: ऐसा क्या खास है वहाँ?
2: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
1: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
2: एमसीज इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
0: और दोस्तों, इस समय 4 मिनट रह गए हैं 7 बजने में, और ए सेगमेंट का आखिरी गीत अभी का। आज कहना जरूरी है कि तुमसे प्यार हुआ है, क्या बात है। उदित साहब अलका जी के साथ आ रहे हैं आप।

0: तो दोस्तों ये था फिल्म अंदाज का गीत जो अभी आप सुन रहे थे, और इसी के साथ ही रेडियो ब्रिजबानी की घड़ी में ठीक 7 बज रहे हैं। आप परमानंद के साथ हैं, संगीत सरगम कार्यक्रम को सुन रहे हैं। थोड़ी देर में हम राव जी को लेकर आएंगे और पंडित सुरेश जी से भी कुछ बातें करनी है, वो भी आएंगे, मगर उससे पहले हम 2-3 विज्ञापन आपके लिए बजा देते हैं। तो चलें, पहला विज्ञापन।
1: क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असि 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हैं। असि होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अगे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विले शामिल हन जो के अगे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो, डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132-268 उते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तो भी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तो वध जमीन उपलब्ध करवा दिती है अते लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है।
0: कुछ विज्ञापन सुन रहे थे और विज्ञापन के साथ साथ इस समय 7:03 हो रहे हैं। आप परमानंद के साथ संगीत सरगम प्रोग्राम रेडियो ब्रिजबानी के माध्यम से सुन रहे हैं और ये प्रसारण हो रहा है 1700 AM के माध्यम से 7 Mile Rocks ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया से। और आज आप जानते हैं कि हमारे ब्रिस्बेन में 26 तारीख है, सितंबर का महीना है, महीना भी समाप्त होने वाला है और मौसम भी अपना रंग बदल रहा है। और आप दूर विदेश से यहाँ वहाँ बसे हैं, सुन रहे हैं, कहीं पर सुबह है, कहीं शाम है, कहीं दिन है, कहीं रात है, कहीं सुबह होने वाली है। तो चलो आगे बढ़ते हैं आपके लिए, तुमने मुझे देखा होकर मेहरबान, रफ़ी साहब समी कपूर जी के लिए पर्दे पर।

0: और दोस्तों, ये था फिल्म तीसरी मंजिल का लोकप्रिय गीत जो भी आप सुन रहे थे। और आगे बढ़ते हैं, चलें अतुल भरद्वाज जी का एक खबर सुने।
1: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
2: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
1: गो फॉर द बेस्ट वीरे, अतुल भारद्वाज जी नु आज ही कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी इंट्रिकेसीज नु हैंडल करन च भी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वद्दा रिच एक्सपीरियंस ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज विच भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
2: Thanks a ton, Veere. I'm so relaxed to hear that.
1: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
0: Abhi samay dosto 8 minute hue hain, 7 bajkar aage badhte hue chale. Kishore ji, Lata ji ke saath aa rahe hain, tere chehre se nazar nahi hatti.

0: दोस्तों, ये था फिल्म कभी कभी का लोकप्रिय गीत, और इसी के साथ ही लगभग 12 मिनट हुए हैं 7 बजकर। चलें एक और खबर ले लेते हैं।
1: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
2: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
1: अरे वाह, इनका पता बताना।
2: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
3: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxlade, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxlade, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
0: और मित्रों, चलें हम आगे बढ़ते हैं। एक और दो गाना है इस बार। किशोर कुमार जी आ रहे हैं लता जी के साथ। फिल्म का नाम था आसपास, 1981 में रिलीज की गई पिक्चर। तुम जो चले गए तो होगी बड़ी खराबी।

0: जयमित्रो मुझे दिल में बंद कर लो, दरिया में फेंक दो चाबी। आप गीत सुन रहे थे, दो गाना था लता किशोर जी का, और इसी के साथ हमारे साथ जुड़े हैं राव जी। राव जी नमस्कार, स्वागत है रेडियो ब्रिजबानी पर।
1: नमस्कार, नमस्कार परमानंद जी, आज आपने चुन चुन कर गीत बजा रहे हैं।
0: थैंक यू। क्योंकि पिछले सप्ताह फरमाइश आई थी वो हनुमान जी का गीत गाना, तो मैं बजा नहीं पाया था, तो मैंने बोला चलो भाई आज शनिवार भी है, सुबह है, मौसम भी खूबसूरत है, तो चलो बजा देते हैं पहले उसको, फिर वहां से हम आगे बढ़ेंगे फिल्मी गीतों की तरफ।
1: आज आज मेरा विषय है हिंदी भाषा का सफर
0: जी।
1: साल 1879 में फिजी में शुरू हुआ हमारा सफर जो आज भी जारी है। जब ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतवासियों को फिजी लाया गया, तब सिर्फ भारत के लोग ही नहीं बल्कि उनकी भाषा, संस्कृति, धर्म और परंपरा भी साथ आई। तब से लेकर अब तक हमारी भाषा, संस्कृति, धर्म और परंपरा कायम है फिजी में, और निस्संदेह आगे भी कायम रहेगा। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है हमारी भाषा हिंदी। जब तक भाषा की मजबूती बनी रहेगी, तब तक उससे जुड़ी हुई हमारी संस्कृतियां भी कायम रहेगी, यूं जीवित रहेगी। हमें गर्व है कि फिजी की राष्ट्रभाषा हिंदी है। हिंदी भाषा के लिखने और बोलने का ज्ञान मुझे बचपन से है, और कक्षा 6 तक मैं पाठशाला में हिंदी की पढ़ाई की, क्योंकि इससे आगे हमारी पाठशाला में हिंदी भाषा सीखने के लिए विकल्प नहीं था। इसके कारण केवल 6 क्लास तक के बाद मुझे हिंदी की शिक्षा प्राप्त करने का अवसर ही नहीं प्राप्त हुआ, तो मैं पेपरों द्वारा और अपने भाषा द्वारा फिजी में हिंदी बात कर रहे थे। फिजी में अन्य जाति के लोग भी हिंदी बोलते और समझते हैं, और कईयों को इसका अच्छा ज्ञान भी है। कहा जाता है कि जहाँ भारतीय लोग अपना कदम रखते हैं, वहाँ एक नया भारत ही लेते हैं, बना लेते हैं। ऐसा फिजी में भी हुआ, इसलिए फिजी को छोटा भारत भी कहा जाता था। हिंदी का प्रयोग हमारे कार्यालयों में बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ विषय ऐसे भी हैं जहां हिंदी भाषा का प्रयोग अनिवार्य होता है। भारतीय लोग जो हमारे यहाँ में अपने किसी काम से आते हैं, उनसे मुख्य हिंदी में ही बात करनी पड़ती है, जिससे कि वे अच्छी तरह हमारे विचारों को समझ सके। जब हमारे मंडली में या कार्यालयों में कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होता है, तब हिंदी में बढ़ावा देने के लिए हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। हिंदी का प्रयोग कार्यालय में अपने सहयोगी और सहकर्मियों के साथ भी करते हैं, क्योंकि उससे काम को समझाने और समझने में आसानी होती थी। हिंदी भाषा से संबंधित कार्यक्रम लगातार आयोजित होते रहना चाहिए, ताकि लोगों की रुचि हिंदी के प्रति बनी रहे। हमारे यहाँ आज फिजी से यहाँ ऑस्ट्रेलिया में लोग हिंदी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, तो हम जहां तक हो सके, जैसे ब्रिजबानी कार्यक्रम हिंदी भाषा में चल रही है, तो हम मिलजुल करके और प्रेम और भाव से ही हिंदी का प्रयोग करें, ताकि हमारे बच्चे जो आएंगे वो भी हिंदी का अनुवाद समझ सकेंगे। तो ये थी हिंदी पर एक छोटी सी विचार परमानंद जी।
0: बहुत बहुत धन्यवाद राव जी, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। भाषा जो आप बोल रहे हैं बहुत प्यारा है, और जब अपने भाषा में हम किसी से बात करते हैं तो उसमें मान सम्मान सब कुछ रहता है और मतलबें भी रहती हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि लोग पसंद करेंगे। और एक मैसेज भी आ गया देखो आपके बारे में कि लोग सुन रहे हैं और पसंद किए जो आप कहे हैं। तो अगले शनिवार को मिलते हैं राव जी, धन्यवाद समय के लिए, नमस्कार जी।
1: नमस्कार।
0: तो मित्रों ये थे राव जी और हिंदी भाषा पर बातें कर रहे थे। और देखिए हिंदी भाषा ने अपनी मातृभाषा जो है ना बहुत काम की चीज़ है। अब हिंदी जब मैं पिछले सप्ताह शायद उदाहरण दिया था और आज भी एक और एग्जांपल वैसे पे दे रहा हूँ कि जब हम कभी कहीं जाते हैं अगर हमें अपनी भाषा के दो लोग बात करने वाले मिलते, कोई और है जो हम गुप्त बातें मतलब कि हमारी आपस की बात होती है, तो हम उनसे कह सकते हैं कि भाई देखिए हम अपने भाषा में कुछ बोलना चाहते हैं। तो पति पत्नी हो या फ्रेंड्स हो साथ में, तो अपने भाषा में गल करने के बाद उनको समझाते हैं हमने क्या बोला। तो इसके मतलब हम उनका मान सम्मान रखे और जो हमें कहना था कह दिए, और फिर जो वो पूछते थे उसका सही जवाब हम दे चुके हैं। तो यही एक फ़ायदा और है मल्टीलिंगुअल, और बहुत लोग पाँच छः भाषाएँ बोलते हैं तो ये अच्छी बात है। तो बच्चों का प्रोत्साहन बढ़ाइए, और यहाँ हिंदी पाठशाला भी है, जगह जगह हिंदी सिखाते हैं लोग, तो आप चले जाइए। पूजा पाठ हो रहा है वहाँ पर हिंदी में वार्तालाप होती है। रेडियो ब्रिजबानी जैसे है 24 आवर्स चल रहा है हिंदी, यहाँ भी समाचार से लेकर म्यूजिक और इसके साथ साथ धर्म प्रचार जो है वो उर्दू भाषा भी यहाँ पर रहती है, उर्दू में है लेकिन ज़्यादातर लोग समझ लेंगे उर्दू। तो आप ऐसे ही करते रहें और चलें आगे। तो देखिए 21 मिनट, जी नहीं जी हाँ 21 ही है, हाँ देखते हैं घड़ी भाई, 27 मिनट हुए हैं 7:00। तो अब हम क्या करेंगे, एक विज्ञापन लेते हैं, विज्ञापन के बाद हम एक गीत बजाएंगे, और गीत के बाद हम कोशिश करेंगे पंडित सुरेश चंद्र शर्मा जी को फ़ोन पर लाने के लिए। वो रास्ते में सफ़र कर रहे हैं, गोल्ड कोस्ट की तरफ जा रहे हैं, और वो पितृपक्ष के विषय में कुछ जानकारी हमें आज देंगे।
2: Hi, this is Amitabh Bachchan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिजवानी।
3: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिजवानी।
4: Hi, this is Salman Khan.
5: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिजवानी।
6: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिजवानी।
7: To everyone tuning into Radio Brizwani, this is Alia.
8: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brizwani से।
9: To everyone tuning into Radio Brizwani, this is Shahrukh Khan.
10: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Brizwani.
11: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है, और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
0: तो मित्रों, आप रेडियो ब्रिजवानी आपकी अपनी पहचान सुन रहे हैं और खुशी की बातें। हमारे साथ जुड़े हैं पंडित सुरेश चंद्र शर्मा जी। पंडित जी, सादर प्रणाम आपको और स्वागत है आपका रेडियो ब्रिजवानी पर।
4: प्रमाण जी, आपको भी प्रणाम, सुनने वालों को नमस्कार। और राव जी का बातें जो सुन रहे थे आपने भाषा के बारे में, तो जरूर भाषा ही हमारी पहचान है ना
0: जी,
4: तो भाषा ही हमें करना चाहिए। और ये भी है कि जो हमारे शास्त्र है, वेद है, कुरान है और पूजा पाठ है, जब भाषा नहीं रहेगा तो हम करेंगे क्या। तो भाषा जी, जैसे राव जी ने कहा, बहुत जरूरी है हमारे लिए। हो सके तो बच्चों को अपने लाए और पढ़ाएं, घर पर भी पढ़ा सकते हैं। वो मिलती है वर्णमाला बोलते हैं ना, चाट आ ई वाली, वो
0: जी,
4: सब
0: जी, जी।
4: ये तो उतना भी अगर बच्चे सीख ले तो कुछ ना कुछ जोड़ कर कर सकते हैं ना
0: जी। हाँ,
4: तो जरा ये सिलसिला भाषा की, जो कि हमारी पहचान है, जरूर हमें कायम रखना चाहिए। और अब कल से पितृपक्ष की जो आपने कहा कि उसके बारे में विवरण हम कुछ देंगे, पितृपक्ष कल से शुरू हो रहा है 27 सितंबर, 27 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर तक। और फिर उसके बाद अगले दिन से 11 तारीख अक्टूबर से लेकर 19 तारीख अक्टूबर तक नवरात्रि का महान पर्व है, जो माता लक्ष्मी सरस्वती और दुर्गा पूजा में होती है। और नवरात्रि हम मनाते हैं हर्षोल्लास के साथ, क्योंकि वही आदि शक्ति जगदम्बा दुर्गा है, लक्ष्मी सरस्वती हमारे घर की भंडार भरने वाली है, बल विद्या बुद्धि प्राप्त कराने वाली है। और भूले ना कि हमारे जो पितृगण हैं, जिनके वंशज हम हैं, उनको भी हम ध्यान करें, कुछ नहीं तो उनको थोड़ा जल तर्पण करें और कुछ दान इत्यादि करें, मंदिर में जाकर कुछ दान कर दे, या कौए को, चिड़ियों को भी खाना खिला दे, और अपने घर पे जानवर है उनको भी खिला दे, तो जरूर हमारे पितरों का भी आशीर्वाद बना रहेगा। परमा जी,
0: पंडित जी थोड़ा सा बतलाएं, थोड़ा विधि बतला दें कि किस प्रकार से जब जल देते हैं अपने पितरों को तो कौन डायरेक्शन में देना चाहिए। जैसे सूर्य उदय होता है तो हम सूर्य को करके करते हैं ना और चढ़ाते हैं, तो थोड़ा सा ये बतलाएं ताकि लोग समझ जाएं। कभी कभी पूछते रहते हैं कि कैसे जल देना चाहिए, कैसे खड़ा होना चाहिए, कौन डायरेक्शन में हो, थोड़ा सा विवरण आप दे दें
4: जी। हाँ, अगर हो सके तो एक पॉट प्लांट में, कुछ नहीं तो एक कुछ पौधा लगा ले और पॉट प्लांट में मिट्टी भरकर एक खड़ा कर ले। वैसे तो हम लोग कुछ ग्रास को लगाते हैं, और हो सके वो करे, नहीं तो केवल एक पॉट प्लांट में एक कोई पेड़ जमा ले, फूल का पेड़ बोले या कुछ कर ले। तो पहला जो जल हम देते हैं वो सूर्य भगवान को देते हैं, क्योंकि सूर्य ही आदिपति, यानी सभी का लेना देना हमारे देवी देवताओं से। सूर्य भगवान को हम पहले तरफ जल देते हैं, हो सके 3 बार सूर्य भगवान को नमस्कार कर ले, और सूर्य के तरफ यानी ईस्ट फेस कर और ऐसे जगह पॉट रखे कि आप उसके आसपास घूम सके, एक थाली में पानी ले ले और सूर्य भगवान को कुछ नहीं तो 3 बार तर्पण कर दे, अर्पण कर दे, मतलब सूर्य भगवान को जल चढ़ा दे और अपने उंगली की तरफ से पानी को देवे, और फिर यानी ईस्ट फेस कर और फिर घूम कर नॉर्थ फेस करें। नॉर्थ फेस अपने जो दिव्य पुरुष हैं, जो हमारे साधु संत हैं, बड़े बड़े ऋषिगण हैं, उनको भी हम, उनके भी हम कर्जदार रहते हैं, क्योंकि उन्हीं के द्वारा जो हमारे वेद शास्त्र लिखे गए उनको हम पढ़ते हैं, तो उनको भी ध्यान करते हैं और ऋषिगण को वो नॉर्थ फेस कर और उनको भी उसी तरह जल तर्पण करें, हो सके 3-5 या जैसे भी आपका इच्छा हो, तो उनको तर्पण कर नॉर्थ फेस कर और फिर घूम कर साउथ फेस करें। जो हमारे पितरों के लिए जल होता है, हमारे पूर्वजों के लिए, तो वही थाली में हम चावल, तिल, फूल इत्यादि मिलाकर रखे, और अगर पानी कम हो रहा तो उसको टॉप अप कर ले और पानी उसमें भर ले। और पितरों के लिए हम जब तर्पण करते हैं तो उसको अंगूठा पानी अंजलि में भर ले, दोनों हाथ से लगाकर अंजलि में पानी भरकर, और दहना अंगूठा के रास्ते से पानी को नीचे जाने दे और अपने पितरों को ध्यान करें। कुछ नहीं तो जो आपके अगर माता पिता नहीं है, दादा दादी आजा आजी है, नाना नानी है, सबके नाम से तीन तीन बार आप हो सके तो तर्पण करें परमा जी।
0: पंडित जी कोई कोई मंत्र उच्चारण आप कर सकते हैं इसमें?
4: केवल पितरों का ले, अगर आपको माता पिता है तो अपने पिता के है ना, पिता के नाम से तर्पण करें, माता के नाम से तर्पण करें, और दादा दादी यानी राजा जी हैं और नाना नानी हैं, जो भी जिनके लिए अपने परिवार अपने फ्रेंड के लिए भी आप कर सकते हैं। कभी कुछ कुछ लोग नहीं करते हैं सब ना
0: जी,
4: तो पितृगण है वो भी खुशी होते हैं कि हमारे लिए कोई कुछ प्रदान किया ना
0: जी।
4: तो बहुत लोग हैं अपने, हम जाते हैं तो अपने वो बोलते हैं कि हम हमारे फ्रेंड है उनको खास है फ्रेंड है, हमें तो पता नहीं कौन कौन उनका फ्रेंड है, लेकिन वो अपने परिवार और अपने मित्रों के लिए भी करते हैं परमा जी।
0: अच्छा जी, तो कितने हाँ बोलिए।
4: अपने गुरुजन सभी के लिए हम तो जल को दे सकते हैं ना
0: जी,
4: आशीर्वाद सभी को मिलेगा।
0: अच्छा, और कितने दिनों तक
4: ये पितृ पक्ष जो है? आप वैसे तो रोज भी कर सकते हैं, कल से शुरू कर और जब तक आपकी इच्छा हो, और नहीं तो कुछ कुछ लोग आखिरी दिन करते हैं जो 10 तारीख होगा ना
0: जी,
4: 10 तारीख को तर्पण करते हैं। और खासकर मैं तो परमा जी हम हर रोज करते हैं, जब जल चढ़ाते हैं तो दो दो अंजलि पानी देने से कुछ कम तो नहीं होता है, पितरों का आशीर्वाद मिलता है। तो जब हम जल चढ़ाने जाते हैं बाहर तो पितरों के भी कुछ जल प्रदान कर देते हैं कि उनका भी आशीर्वाद सभी को मिले।
0: बढ़िया है। और अंत में जैसे आपने कहा कि जो आप दान करना चाहते हैं चाहे मंदिर में या कोई गरीब दुखिया को, या पंडित जी भी अगर मिल गए तो उनको भी आप दान कर सकते हैं।
4: जी हाँ, आप किसी भी तरह से वो अपने हाथ से कुछ दान कहीं भी करे तो, और भगवान तो जानते हैं घट घट के वासी हैं, हमारे पितर भी उन्हें पितर देवता बोला जाता है ना
0: जी,
4: तो आशीर्वाद मिलता है कोई भी रूप में आप करें। एक कौओं को भी खाना खिला दे, क्योंकि ये जो हम लोग कभी कभी लोग बोलते हैं जो हम लोग भोजन प्रदान करते हैं पितृ पक्ष में, या वैसे भी हम लोग भोग लगाते हैं कुछ चिड़िया इत्यादि को खिला देते हैं, तो कहते हैं जो कौआ है चींटी है और कुत्ते हैं गाय हैं और अगर पानी में छोड़ दे मछली है, ये सब रास्ते से हमें पितरों तक बोलते हैं हमारा जो भोजन वो पहुंच जाता है, या किसी किसी को भोजन खिला दे इंसान को भी, तो या पुरोहित को या ब्राह्मण को, तो कहते हैं इस रास्ते से हमारे पितरों तक भी वो पहुंचता है परमा
0: जी। हाँ पंडित जी, बहुत खूब आपने कहा, और शायद जब आपका यहाँ से उड़ान हो तो ये रास्ते में मिले सहायता प्रदान करने के लिए ना
4: जी। हाँ, वैसे तो हम लोग आकांक्षा करते हैं यानी प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमें मोक्ष को ले जाए ना
0: जी,
4: तो क्योंकि वो कई रास्ते हैं, हम पितृ भी बन सकते हैं तो पितृ में जाएंगे, उस योनि में जाएंगे तो शायद लौट के आना पड़े, और अगर मुक्ति यानी मोक्ष को प्रदान कर ले तो सीधी भगवान के पास ही चले जाए, फिर लौटना नहीं पड़ेगा
0: जी। हाँ,
4: लेकिन हमें पता नहीं कि हमारे परिवार में कौन पितृ लोक में है, कौन मोक्ष प्राप्त किए हैं, तभी हम सभी के लिए करते रहते हैं कि सभी का आशीर्वाद मिलते रहे परमा
0: जी। आप सही कह रहे हैं पंडित जी, एक चीज मैं सीखा हूँ इतने सालों से और ये अनुभव भी करते रहते हैं कि जब आप सफेद दिल से उठे और सबका भलाई करते हुए और ये प्रार्थना के रूप में अगर आप पूछें सवाल, तो शायद जवाब आपको खुद ही मिल जाएगा कि आपके माता पिता आई मीन जो इस संसार में नहीं पितरन जिसको हम बोलते हैं कहाँ हैं, किस रूप में हैं, कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, ये सब दिखाई देगा। तो लोगों को यही बतला रहे हैं कि अगर आप कोशिश करें और साफ दिल होना चाहिए और सच्चाई पे रहना चाहिए, और ये मत सोचें कि ऐसे मैं देखना चाहता हूँ या देखना चाहती हूँ तब होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो यही था, और बहुत अच्छी बात है कि आपने आकर कर दे। कुछ लोग बोलते हैं कि आप एक प्रार्थना के रूप में कहें ओम नमो पितराय नमः, ये सही है?
4: जी हाँ, वो बोल सकते हैं कोई भी अपने अपने जो अपने टूटे फूटे शब्द में कुछ भी कर सकते हैं। भगवान तो कहते हैं कि ओम भी बोल तो ओम पितृ देवाय नमः ना।
0: जी हाँ जी हाँ,
4: पितृगण हमारे सर्व पितृ का लिए, और उससे ज्यादा और अच्छा जरूरी बात है कि जो हमारे जीवित पितर हैं, जो माता पिता हैं हमारे और बड़े लोग हैं, उनका आदर सम्मान करना, उनको भोजन खिलाना, वो भी वो उसको बोलते हैं जीवित पितर ना
0: जी।
4: जो हमारे माता पिता हैं, बड़े लोग हैं, उनका सेवा करना वो भी बराबर का ही आपको सौभाग्य प्राप्त हो और आशीर्वाद मिले प्रधान जी।
0: जी हाँ पंडित जी, आपने बहुत अच्छी तरह से अंत में भी कहे जो भी कह रहे हैं कि भी हमारे सामने वो जीवित हैं, हमें इनको वही सेवा जो भी बन पड़े उतना उस स्तर का सेवा प्रदान करें ताकि वो खुश रहें हमेशा। तो उनके जो वो आशीर्वाद जो मिल रहा है वो कहीं कह रहे ना कि जो आशीष दिल से दे भगवान से भी टाली ना जाए ना, तो ये बात है, गीत में भी आता है। तो चलो पंडित जी, अंत में कुछ और कहना है?
4: नहीं, बस यही है कि हमारे पितरों का आशीर्वाद कहते हैं, जो पितरों का आशीर्वाद पहला है, फिर हमारे देवी देवताओं के आशीर्वाद है, और भगवान के आशीर्वाद तो बना ही रहता सभी के सर पर
0: जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आने के लिए, समय के लिए। थोड़ा लंबा हम बात किए हैं क्योंकि लोगों का बहुत सारे सवाल थे और अब शायद उन जो सुने होंगे तो उनको मालूम हो चुका होगा कि किस प्रकार से हमें ये जो 8-10 दिन का है कैसे बीतेगा। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है और उनको बस हम याद करें और आगे बढ़ें।
4: खत्म करते हैं
0: जी।
4: ओ मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरी सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्ते। माँ लक्ष्मी की कृपा बने, हमारे पितरों का आशीर्वाद मिलती रहे और भगवान की सदा आशीर्वाद सभी पर बनी रहे।
0: धन्यवाद पंडित जी और सादर प्रणाम आपको। तो मित्रों, ये थे पंडित सुरेश चंद्र शर्मा जी, पितरों के विषय में कुछ जानकारी हमें प्रदान किए हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये जानकारी सुनकर अब आप जो कुछ करेंगे बहुत भली भांति से कर सकने में करने में समर्थ रहेंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं, जबकि घड़ी की तरफ देख रहा हूँ 20 मिनट रह गए हैं 8 बजने में। उनको याद कर रहे हैं जिनका जन्मदिन या शादी की सालगिरह है उन लोगों को, और आपके जन्मदिन अगर आपका है तो जन्मदिन के बहुत बहुत शुभकामनाएं हम रेडियो ब्रिजबानी की तरफ से भेज रहे हैं। जिनकी शादी की सालगिरह आपको हम याद कर रहे हैं, आपकी जोड़ी सदा सलामत रहे और मालिक आपका सभी कुछ से भरपूर रखे। तो चलो आगे बढ़ते हैं। एक मज़ेदार गीत है, मुकेश जी का अदा किया गया और मुकेश जी और लता जी साथ में हैं, तो इसे सुनते हैं। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना।

0: जब मित्रों बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, क्या बात है। बहुत बढ़िया सा गीत था, बहुत बढ़िया सा ये फिल्म था। और उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। और रेडियो ब्रिजबानी आपकी अपनी पहचान सुन रहे हैं, मैं हूँ परमानंद। संगीत सरगम नामक कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं और हम आगे बढ़ते हुए चलें। आगे बढ़ते हुए क्या है कि कुछ गाना ज़्यादा हैं लेकिन सब तो नहीं बजा पाएंगे आज, जो सेगमेंट तैयार किया था मैं। और चलें विज्ञापन के तरफ भी हम ध्यान दें। विज्ञापन जो हम लेकर आए हैं, चलें लोटस एट बजा देते हैं, उसके बाद फिर हम एक दो और बजाएंगे।
1: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है, सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
2: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
1: अच्छा, वो क्या?
2: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
1: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
2: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
3: सासों की माला पे सिमरूं मैं।
4: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जानिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम। टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premierTickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्विदीज फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।
0: तो मित्रों, ये थे विज्ञापन। और इस समय लगभग 13 मिनट रह गए हैं 8 बजे में। 8 बजे रानी क्रिएशंस का साप्ताहिक कार्यक्रम फैशन की दुनिया हम आपके लिए लेकर आएंगे। फिलहाल हम चलते हैं प्यारा सा दो गाने के साथ। अनुराधा पोटवाल जी हैं उदित साहब के साथ।

0: आगे बढ़ते हैं, खबर ले लेते हैं।
1: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
2: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
1: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
2: अरे उमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
1: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
2: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
1: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
2: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
3: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
0: और दोस्तों, इस विज्ञापन के साथ साथ 7 मिनट रह गए हैं 8 बजने में, चले आगे बढ़ते हैं। सुनो, निगम जी आ रहे हैं अलका याग्निक जी के साथ, और शैली जी राम राम। आप बहुत देर से प्रोग्राम सुन रही हैं, प्रोग्राम आपको पसंद आ रहे हैं, तो चलो एक गीत में आपको भी शामिल कर रहा हूँ। ऐसा लगता है जो होना न था।

0: जी मित्रों, ये सीन अगर आप देखेंगे कभी ना वीडियो पे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब हम गांव में थे तो गांव में एक बड़ा मुश्किल हुआ करता था कि हमारे पास नल का पानी तो था नहीं उस समय। तो सुबह उठते बाल्टी लेते हैं और कुआं की तरफ चले जाते हैं और वहाँ जाकर पानी भर कर और फिर कपड़े तो पहने रहते थे और बस स्नान करते हैं, ऐसा था। और फिर ये जो बातें ये फिल्म में दर्शाई गई है, जो सीन आया है, एकदम दिखाता है कि भाई कैसा था उस समय का माहौल, कैसा था सब कुछ। और ये एक्सपीरियंस एक बड़ा अनोखा एक्सपीरियंस है। उस समय बहुत लोगों की याद आती थी और सबको याद करते हुए ऐसे मस्ती में हम थे सुबह सुबह। तो ये था। और उम्मीद कर रहा हूँ कि ये गीत सुनने के बाद आपका भी जो शायद जो मैं सोच रहा हूँ वो पूरा हुआ होगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ते हुए अब 8 तो बज चुके हैं और अभी से लेकर ठीक 8:15 तक रानी क्रिएशंस का साप्ताहिक कार्यक्रम फैशन की दुनिया हम आपके लिए पेश करेंगे। तो रानी क्रिएशंस की ओर से आपका तहे दिल से स्वागत है। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, भेंट रहे हैं कर रहे हैं हम।
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा। ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.
0: जय मित्रों, Rani Creations की ओर से आपका सप्ताहांत बड़ा शुभ तथा मंगलमय हो। और याद रहे, हर प्रकार के शॉपिंग के लिए Rani Creations का नाम जरूर याद रखें। और जैसे आपने पते में सुने हैं कि 33 बालकलावा स्ट्रीट उलंगेवा में है। सप्ताह के 7 दिन खुलते हैं, सोमवार से लेकर शनिवार तक सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक, और रविवार को सुबह 10 से लेकर शाम को 3 बजे तक। और छुट्टियों में जैसे आने वाला है 5 तारीख का छुट्टी, तो खुले रहेंगे सुबह 10 से लेकर शाम को 2 बजे तक। तो चलो आगे बढ़ते हैं। पहला गीत है वो बजाते हैं आपके लिए, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ साथी मरते दम तक। गीत के बोल हैं और सही है, ऐसे ही चाहिए। जब कोई रिश्ता बनता है, रिश्ता को हम हमेशा घनिष्ठ ही बोलेंगे, तो छोड़ेंगे नहीं तेरा साथ साथी मरते दम तक। बात सही आता है, जो वादा किया उसको हमें निभाना चाहिए। तो चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए इस गीत का आनंद लेते हैं। और जो लोग प्रोग्राम को सुन रहे हैं आपका, मैं परमानंद हृदय से स्वागत कर रहा हूँ।

मित्रों, इस गीत को वैसे मोहम्मद अजीज और साथियों ने अदा किया है, मगर आज AI वर्जन से इसे हमने लिए थे आपके लिए, और उम्मीद कर रहा हूँ आपको अच्छा लगा होगा। और आप रेडियो ब्रिजवानी आपकी अपनी पहचान सुन रहे हैं, जिसके अंतर्गत स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम रानी क्रिएशंस का साप्ताहिक प्रोग्राम फैशन की दुनिया आप सुन रहे हैं। रानी क्रिएशंस में मित्रों सब कुछ यहाँ पर उपलब्ध है, चाहे शादी कर रहे हैं या पूजा पाठ कर रहे हैं या कोई फंक्शन में जा रहे हैं या फिर कुछ फैब्रिक वगैरह भी आप खरीदना चाहते हैं और ज्वेलरी से सजना चाहते हैं, और यहाँ पर सब कुछ मिलता है और बहुत ही उचित दामों पर। अप टू 50% ऑफ डिस्काउंट भी चल रहा है ऑन सेलेक्टेड आइटम्स। तो खरीद बीन करने के लिए एकमात्र केंद्र बनाइए रानी क्रिएशंस की दुकान, 33 बालकलावा स्ट्रीट उलंगेबा में। पार्किंग का कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, पार्किंग अवेलेबल है। और नंबर आप याद रखें, शॉप का नंबर है 3391-0622 या मोबाइल पर 04139515546। तो चलो आगे बढ़ते हैं। ईशानी तारा सिंह जी का फरमाइश था ये गाना कि नाना इसे आप बजा देना, तो मैंने बोला चलो भाई बजाते हैं सनू कैंडी। ये बहुत ही जोश भरा गीत है आपके लिए।

ये मित्रों, चूड़ी वगैरह सब कुछ यहाँ पे मिलेगा रानी क्रिएशंस दुकान में, तेरी तेरी बालकलावा स्ट्रीट उलंगेवा में। कोई गिफ्ट हो या किसी को देना, वो भी आपको यहाँ पर मिलेगा। तो याद रहे, तेरी तेरी बालकलावा स्ट्रीट उलंगेवा में रानी क्रिएशंस का आप आकर हर प्रकार के कपड़े के साथ साथ सजने सजाने के लिए आप चीज खरीद सकेंगे। तो हम आपको आगे ले चलते हैं। अगला जो गीत है वो है सौदा खरा खरा। तो हाँ, अगर रानी क्रिएशन शॉप में आओगे तो उचित दाम पर सब कुछ मिलेगा आपको। फैमिली एनवायरनमेंट है, घरेलू वातावरण के साथ आप शॉपिंग करेंगे। यहाँ कौन बिल्डिंग है, सब कुछ सही है यहाँ पर। और जो आप आँख से देखकर खरीदेंगे ना, उसे पहनेंगे। तो आइए, अप टू 50% ऑफ डिस्काउंट आपको मिलेगा। और एक्सेसरीज में टेबल्स हैं, जूती है मेंस का, स्टॉल्स वगैरह हैं अगर शादी वगैरह कर रहे हैं, और लेडीज़ का पूरा शादी वगैरह हो रहा तो मैचिंग ज्वेलरी के साथ साथ जोड़ा भी यहाँ पर मिलेगा। तो हर प्रकार की खरीदबीन यानी कि ए टू जेड शॉपिंग के लिए सब कुछ यहाँ है। और दूसरी बात है, अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं तो रानी क्रिएशंस के ऑनलाइन शॉपिंग पे जाएं, पता है rani-creations.com पर, और यहाँ पर गिफ्ट वगैरह यहाँ से खरीद सकते हैं। तो चलिए, जब आगे बढ़ते हैं और सुखबीर जी अपने साथियों के साथ अदा कर रहे हैं इस गीत नए अंदाज में।

0: जय मित्रों, सौदा खरा खरा आप सुन रहे थे और इसी के साथ ही रानी क्रिएशंस का साप्ताहिक कार्यक्रम फैशन की दुनिया के समाप्ति पर हम पहुंच रहे हैं और उम्मीद कर रहा हूं कि आज जो सेगमेंट आपने सुने हैं आपको अच्छा लगा होगा। अगले शनिवार को एक बार फिर 8 से 8:15 के बीच एक और सेगमेंट लेकर आएंगे। फिलहाल हर प्रकार के शॉपिंग के लिए याद रहे नाम रानी क्रिएशंस का, और यहाँ पर आपको सब कुछ DVD वगैरह भी मिलते हैं, और अगर जो जप करते हैं माला वगैरह 108 बीट्स का क्लियर हो रहा है $10 ईच, और अप टू 50% ऑफ डिस्काउंट कपड़े पर, कंडीशंस डू अप्लाई। तो अगले शनिवार तक रिमेंबर द नेम रानी क्रिएशंस 33 बालाकलावा स्ट्रीट ओलंगाबाद, और यू हैव अ लवली एंड एंजॉयबल डे, हैप्पी वीकेंड, गॉड ब्लेस यू। रिमेंबर फॉर ऑल योर शॉपिंग नीड्स रानी क्रिएशंस। नमस्कार, सत श्री अकाल, अल्लाह हाफिज।
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बालाकलावा स्ट्रीट, वोलंगाबा। ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.
0: एक बार फिर आपका तहे दिल से स्वागत है संगीत सरगम प्रोग्राम में, और अब एक विज्ञापन प्रिंस ज्वेलर्स का।
2: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
3: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
2: Wow, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व, पर एड्रेस?
3: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
0: दोस्तों, 17 मिनट हुए हैं 8 बजकर, और परमा और आपका मेरा साथ और आपका साथ रहेगा ठीक 8:30 बजे तक। और चलो आगे बढ़ते हैं। फिल्म खिलाड़ी का बहुत ही लोकप्रिय दो गाना अलका जी अभिजीत के साथ अदा कर रहे हैं। 90s हिट रोमांटिक सॉन्ग्स में से एक ए है। हम किसी से वादा करते हैं तो वादा निभाना जरूरी है ना।

जी मित्रों, बहुत प्यारा सा गीत आप सुने और आगे बढ़ते हैं। शायद एक गीत का और समय है, उसे हम पूरा कर लेते हैं। और उम्मीद कर रहा हूँ कि अभी तक जितने भी गीत आप सुने हैं आपको अच्छा लगा होगा। और एक गीत है, शायद प्रोग्राम का आखिरी गीत रहेगा, तो इसे हम आपके लिए पेश करेंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं। गीत के बोल हैं, सुनो ना सुनो ना सुनो ना, अभिजीत जी अदा कर रहे हैं। और इसे मैंने लिया था फिल्म चलते चलते से। तो चलो सुनते हैं इस गीत को।

इसलिए दोस्तों इस गीत को यहीं पर छोड़ना पड़ रहा है क्योंकि समय अभाव के कारण निविया जी आ जाएंगी ठीक 8:30 बजे से टॉप 10 को लेकर, और फिर आप और उनका साथ रहेगा। तो अगले शनिवार तक आज्ञा चाहेंगे और उम्मीद कर रहा हूँ कि आज जो गीत आप सुने आपको पसंद आया होगा। जिन लोगों ने मुझे टेक्स्ट किए और कॉल किए, थैंक यू सो मच। प्रिय श्रोतागण, इसी के साथ संगीत सरगम नामक कार्यक्रम यहीं पर समाप्त हो रहा है। अगले शनिवार को एक बार फिर परमानंद के साथ ठीक 6:30 बजे से एक और अनोखा संगीत सरगम नामक कार्यक्रम आप रेडियो ब्रिजवाणी के माध्यम से सुन सकेंगे। आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल और खुदा हाफिज। आप अपना ख्याल रखिएगा। हम

0: छत पे।
1: हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम शुरू हो गया है, टॉप 10 हॉट 10 मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। कैसे हो, हैप्पी वीकेंड आप सबको। सबसे पहले तो जी हाँ, मतलब कैसी बात है ना, ऐसा कहने की बात है कि वीकेंड जो है वो बहुत दिन बाद आता है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि वीकेंड जल्दी आ गया। मतलब अभी तो अभी पिछला वीकेंड गया था और अगला वीकेंड यहाँ आ गया, तो आई एम क्वाइट हैप्पी एंड आई एम लाइक ओके। अब क्योंकि मैं खुश हूं तो मैं अपने लिसनर्स के साथ अपनी ये खुशी बांटने वाली हूं। सो आप भी खुश, मैं भी खुश और पूरी दुनिया में तो वैसे ही खुश। जी हाँ, तो आइए शनिवार के इस प्रोग्राम का टॉप 10 हॉट 10 में आपका स्वागत करते हैं और इसकी शुरुआत करते हैं। जी हाँ, टॉप 10 हॉट 10 में क्या होता है, वेल हम आपके लिए लेकर आते हैं 10 चुनिंदा गाने, वही गाने जो आपको फील कराते हैं हॉट, आई मीन इन अ ट्रेंडी वे। जी हाँ, और साथ में आपको वो गाने भी सुनाते हैं हम जो कि ट्रेंडी होते हैं और एकदम गजब के होते हैं और हर किसी की जुबान पे होते हैं और हर एक म्यूजिक स्ट्रीमिंग साइट पर उनका जलवा जो है वो चल रहा होता है। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, आइए शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की। सबसे पहले शुरुआत होगी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के साथ, वेल ऑफकोर्स वो गाना ही होगा क्योंकि ये इवनिंग वाइब नहीं है। और आप लोग बोलोगे कि क्या हमें लग रहा था निवेश शर्मा तुमने कहीं यहाँ पे भी डीप ब्रेथ एक्सरसाइज का रिचुअल तो नहीं शुरू कर दिया। वेल मुझे भी ऐसा लग रहा था कि आपको कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है, लेकिन नहीं, हम वो नहीं कर रहे हैं। हम सीधा प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं 10वें नंबर के गाने के साथ। वीकेंड की खुशी है, बांटने से बढ़ती है, तो आइए सबसे पहले आपको नंबर 1 गाना सुनाते हैं, यानी कि नंबर 10 गाना सुनाते हैं, क्योंकि इसमें हम 10, 9, 8, 7 से होके आगे की ओर जाते हैं। राना बली, जी हाँ राना बली, ये एक मूवी है ओ मेरे साजन, और वही गाना जो है इस मूवी का है। मूवी का नाम है राना बली और गाने का नाम है ओ मेरे साजन। नाउ ये मूवी बहुत दिलचस्प है क्योंकि ये विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की मूवी है जो कि रियल लाइफ हस्बैंड वाइफ बन चुके हैं एंड उनकी शादी की फोटोज जो है वो आज भी ट्रेंडी है। कैन यू इमेजिन, उन्होंने ऐसा ट्रेंड सेट किया जो आज भी खत्म नहीं होने में आ रहा। सो या विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना आपको ऑन स्क्रीन दिखने वाले हैं जल्द ही। अक्टूबर में ये मूवी रिलीज हो रही है, इसके बारे में हम और भी बात करेंगे, लेकिन पहले इसका जो गाना ड्रॉप हुआ है अभी 3 दिन पहले उसके बारे में बात करेंगे, 4 दिन पहले, और ये है गाना ओ मेरे साजन। सुनते हैं इसको क्योंकि ये ट्रेंडी बना हुआ है और हमारी लिस्ट में भी है।

जी हाँ दोस्तों, तो ये गाना है खूबसूरत सा और आवाज से आपको पता चल ही गया होगा कि इसे गाया है हमारी फेवरेट फेवरेट सिंगर, गेस कर सकते हो? अरे कीजिए, श्वेता मोहन ने गाया है इसे और साथ में गाया है जावेद अली ने। ऑल्दो आपको इस गाने को सुनकर शायद ये भी लग रहा होगा कि कहीं से श्रेया घोषाल ने तो नहीं गाया। वेल, जब आप इसे पहली बार सुनते हो तो ऐसा लगता जरूर है कि ये श्रेया घोषाल का गाया हुआ गाना तो नहीं है। जी हाँ, इसी के साथ यहाँ पर ये मूवी जो है वो अक्टूबर में रिलीज होगी, जैसे मैंने कहा, एंड इट्स अ हिस्टोरिकल मूवी। जी हाँ, ये हिस्टोरिकल मूवी है, मतलब ये मॉडर्न मूवी नहीं है, सो उसके लिए रेडी हो जाइए। और विजय देवरकोंडा ने जो बहुत वक्त से इसी मुझे रखी है ना, वो इसी रोल के लिए रखी थी। सो या ब्रेस योर सेल्फ, गेयर अप फॉर इट, एंड यहां पर आगे की ओर बढ़ने का वक्त हो गया है। इसी के साथ अगला गाना है टॉक्सिक मूवी का, जिसकी टॉक्सिसिटी ने मूवी को ही हिट होने से रोक दिया। मतलब गाना ऐसा रख दिया कि फांगशू ही गड़बड़ हो गई। टॉक्सिक मूवी की जो टॉक्सिसिटी है वो बॉक्स ऑफिस तक चली गई और वहां पर ये जादू अपना नहीं चला पाई। मतलब शीर फेलियर ये मूवी है। जी हाँ, ऑलमोस्ट 1000 करोड़ का बजट में ये मूवी बनी थी, लेकिन ये 400 करोड़ भी नहीं कमा पाई है, आप इमेजिन कीजिए। जी हाँ, सो ये है मदहोश गाना, जो कि अच्छा है, मूवी उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन इसमें कियारा आडवाणी और यश की एक्टिंग की सराहना जरूर हो रही है।

जी हाँ, मदहोश में और दिल बड़ा किसी दोष में। जी हाँ, इसी के साथ आगे की ओर बढ़ते हैं। दो गाने आप सुन चुके हैं। एक चीज मैं आपको बता दूं कि इस हफ्ते की जो टॉप 10 हॉट 10 की लिस्ट है ना, वो बहुत ही जबरदस्त है। लगभग सारे के सारे गाने नए हैं जो कि ट्रेंड कर रहे हैं, और पुराने गाने जो काफी वक्त से ट्रेंड कर रहे थे, जो रिपीट हो रहे थे मतलब हर हफ्ते, और वो इस स्पॉट को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, इस लिस्ट को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, मतलब वो फिर भी ट्रेंड कर रहे थे, अब वो थोड़े फीके पड़ गए हैं, थोड़े ठंडे हो गए हैं। सो यहाँ पर नए नए गाने और नए नए गानों के साथ हमारा साथ पुराना पुराना ही रहेगा आपके साथ हमेशा। जी हाँ, इसी के साथ आगे की ओर बढ़ते हैं और आठवें नंबर के गाने की तरफ रुक करते हैं, जो कि है बहुत ही जबरदस्त दो नंबरी। अगर आप लोग ड्राइव पे जा रहे हो ना, और अगर आप लोगों को थोड़ी भी हरियाणवी समझ आती है और नहीं भी आती है ना, तो भी ये गाना प्ले कीजिएगा। बेसिकली ये गाना तो है ऑफकोर्स मिर्जापुर द मूवी का, लेकिन ये गाना जो है वो बहुत ही जबरदस्त है। गाने में कहता है कि जो बंदा है वो एक नंबर है, लेकिन उसका जो धंधा है वो दो नंबर का है। जी हाँ, So, वही वाली सारी बात यहां पर कहने की कोशिश हो रही है, लेकिन बड़े ही स्वैगी तरीके से। एंड अगेन मैं आपको यह भी बताने वाली हूं कि कौन सी मूवीज जो हैं वो आप इस हफ्ते अपने नजदीकी सिनेमा घरों में देख सकते हो। जी हाँ, और उसमें से ये भी एक है, यानी कि मिर्जापुर द मूवी लगी हुई है। एंड लेट मी टेल यू, इट्स ब्रेकिंग ऑल द रिकॉर्ड्स, एंड आई एम नॉट किडिंग, आई एम वेरी सीरियस व्हेन आई एम सेइंग इट। जी हाँ, इसी के साथ यहां पर मिर्जापुर द मूवी का दो नंबरी सॉन्ग आप सबके लिए।

0: ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: Yes baby, but no compromise with quality and health. हम जाएंगे सिर्फ MC's Indian and Island Food.
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, quality spices, lentils, rice, flour और frozen sabzi from Fiji and India. Brisbane के best Indian butcher supplying farm fresh goat, lamb, chicken and duck और fresh local produce भी रखते हैं. साथ ही kitchenware and disposable plates की large range किसी भी function के लिए.
0: अरे वाह, intelligent हो गई हो.
1: MC's Indian Indian and Island Food serving Brisbane since 1999. Open 7 days. Find us on Facebook or visit website mcsfoods.com.au. 1 by 268 Kingston Road, Slacks Creek, phone number 3804-3818. That's 3804-3818.
2: Oye Rahul, vire tere case da ki hoya?
3: Oh yara, main bahut worried ha. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
2: Hmm. Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience aa. Te law di entry cases nu handle karan ch vi o expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadda rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience aa. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
3: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
4: Mera naam Dr. Kumar hai. Aur yahan kuch aisa hai, jise janna achha hai. Ek naya National Lung Cancer Screening Program shuru hua hai. Ye saral hai, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
5: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है टॉप 10 हॉट 10 मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। दोस्तों इसी के साथ अब वक्त हो गया है आगे की ओर बढ़ने का, और आगे की ओर बढ़ने से मेरा मतलब है कि अब लिस्ट में आगे की ओर जाने का, प्रोग्राम को आगे बढ़ाने का। जी हाँ, आगे बढ़ते रहने का नाम ही जिंदगी है और आगे बढ़ते रहने का ही नाम प्रोग्राम भी है। जी हाँ, इसी के साथ अगला गाना है कहो तो। जी हाँ, कहो तो, और ये कौन सी मूवी का गाना है? ये मूवी का गाना है जो कि आने वाली है और इस मूवी का नाम है प्रेम कीटाणु। जी हाँ, नाउ आई नो, मुझे हमेशा से पता था कि प्रेम यानी कि प्यार और कीटाणुओं का कुछ लेना देना है। जी, आप लोग बोलोगे क्या फेंक रही हो निविया, कैसे ऐसे कैसे हो सकता है? वेल, आप देखिए, मतलब प्रेम कीटाणु ना किसी वायरस से भी ज्यादा खतरनाक है। मतलब ये हो गया तो इसका कोई इलाज ही नहीं है। जी हाँ, सो प्यार हो गया तो कोई इलाज नहीं है, तो प्रेम कीटाणु इज कीटाणु ओनली। जी हाँ, और ये पक्की बात है, इट्स अ साइंटिफिक प्रूवन फैक्ट आई थिंक बाय नाउ। जी हाँ, इसी के साथ अब आगे की ओर बढ़ते हैं और प्रेम कीटाणु ही आपको सुनाने के लिए, प्रेम कीटाणु का गाना कहो तो मैं आपको सुनाने के लिए तैयार हूँ। सुनते हैं इसको, क्योंकि ये है 7वें नंबर का गाना इस हफ्ते की टॉप 10 हॉट 10 की लिस्ट का।

जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ इसके साथ आगे की ओर बढ़ने का वक्त हो गया है। जी हाँ, और आगे की ओर बढ़ने से मेरा मतलब यही है कि आपको बताने का वक्त हो गया है इस हफ्ते आप क्या क्या अपने नजदीकी सिनेमा घरों में देख पाएंगे। जी हाँ, और नजदीकी सिनेमा घरों में देखने के लिए तो आपको जाना पड़ेगा नजदीकी सिनेमा घरों में। जी हाँ, बात नहीं बनेगी ऐसे। और बेसिकली मैं बात कर रही हूं कि थिएटर्स में क्या क्या नया लगा हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं उस मूवी की जो रिलीज हुई है आज ही। जी हाँ, मतलब आज ही से मेरा मतलब है पिछले कल फ्राइडे को। और फ्राइडे को रिलीज होने वाली मूवीज में से एक है द विवान। जी हाँ, द विवान इज द मूवी जो कि रिलीज हुई है, और ये है सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड तमन्ना भाटिया की मूवी। इसी का गाना भी मैं अब आपको सुनाने वाली हूँ, क्योंकि जो गाना ट्रेंड कर रहा है वो इसी ही मूवी का गाना है। जी हाँ, और ये गाना जो है वो ट्रेंड कर रहा है, इसके और गाने भी ट्रेंड कर रहे हैं। ये है एक साइफाई हॉरर, जी हाँ, एक्शन और ऐसे वाली मूवी, मतलब साईफाई, फैंटेसी, हॉरर, ये सारे के सारे जॉनर जो है वो आपको मिलेंगे। हॉरर जो है ऑल्दो आपको कम मिलेगा, लेकिन साईफाई और फैंटेसी आपको ज्यादा जो है वो मिलने वाला है। सो उसके लिए रेडी हो जाइए, क्योंकि यही जो है वो आपको मिलने वाला है इस हफ्ते। और इसके अलावा भी एक मूवी जो है वो रिलीज हुई है जो कि आप देख सकते हो, और वो मूवी क्या आप गेस करना चाहते हो? गेस कीजिए। अरे गेस तो कीजिए। नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दायरा। जी हाँ, ना ना ना, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दायरा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी हॉलीवुड मूवी ऑल्सो। आई एम टॉकिंग अबाउट द पैराडाइज। जी हाँ, द पैराडाइज। और एक है महाकाव्य श्री रामायण कथा। जी हाँ, मतलब ये वो रामायण नहीं है जो आप सोच रहे हो रणबीर कपूर और साई पल्लवी वाले, वो हो रही है नवंबर को रिलीज। ये कोई और मूवी है जो कम बजट में बनी है, लेकिन इसमें किसी भी एक्टर की एक्टिंग मुझे पसंद नहीं आई, जो कि मैं आपको अपना रियल रिव्यू अगर मैं दूं। सो या आप ट्रेलर देखिए और फिर आप सोचिए कि आपको है या नहीं देखना है, बट मुझे नहीं लगता आप इसे देखने जाओगे। ऑल्दो स्टोरी ऑफकोर्स अच्छी है, जिस स्टोरी पर ये बनी है वो मूवी, आई मीन स्टोरी तो अच्छी है, बट मूवी में जो कैरेक्टर्स है उनकी जो एक्टिंग है वो फेल होती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ लव लॉटरी भी रिलीज हुई है इसी हफ्ते, जो कि आप देख सकते हैं। सो ये कुछ मूवीज हैं जो कि रिलीज हुई है इस हफ्ते। इसके अलावा दायरा जो है, जिसमें आपको करीना कपूर खान मिलने वाली है, और साथ में आपको मिलने वाले हैं पृथ्वीराज सुकुमारन। मतलब ये दो एक्टर्स हैं, एक बॉलीवुड से निकल कर आ रहा है, एक टॉलीवुड से निकल कर आ रहा है बॉलीवुड से, और ये दोनों ने मिलकर अच्छी एक्टिंग करके आपको एक क्राइम ड्रामा थ्रिलर जो है आपके लिए लेकर आए हैं। सो आप ये भी देख सकते हैं, पिछले हफ्ते रिलीज हुई मूवीज में से ये एक है। इसके अलावा कुछ मूवीज हैं जो आप देख सकते हैं, विच आई एम गोना टेल यू अबाउट, लेकिन पहले आपको हम एक और गाना यहां पर सुनाने वाले हैं।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
3: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
2: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
3: बिल्कुल। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
4: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है टॉप 10 हॉट 10 मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। वीकेंड का वार है, ऑफ कोर्स हम आपको बता रहे हैं उन मूवीज के बारे में जो आप देख सकते हैं इस हफ्ते अपने नजदीकी सिनेमाघरों में, मतलब थिएटर्स में। कुछ अपनी फैमिली के साथ, कुछ अपने फ्रेंड्स के साथ और कुछ अपने पार्टनर्स के साथ। मतलब हर टाइप की मूवी जो है मुझे लगता है इस वक्त लगी हुई है। काफी अच्छा वक्त है थिएटर्स के लिए, क्योंकि काफी सारा माल जो है यहां पर उन्हें मिल रखा है लगाने के लिए। जी हाँ, तो जैसे मैंने आपको बताया कि कैसे द वीवान फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट के साथ आपको मिलेगी दायरा, जी हाँ, जो कि पिछले हफ्ते ही रिलीज हो चुकी थी। इसके साथ आपको लव लॉटरी मिलेगी, इसके साथ आपको प्रीति जिंटा के अगर आप फैन हैं तो आपको वाइब भी मिल सकती है। जी हाँ, इसमें वो कुणाल कैमू के साथ एक्शन और कॉमेडी करती हुई नजर आएंगी। ऑफकोर्स मिर्जापुर द मूवी तो लगी ही हुई है, लेकिन मिर्जापुर द मूवी के लिए आपको रुकना पड़ेगा। मतलब वो आप सिर्फ अकेले देख सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ देख सकते हो, क्योंकि इसमें बहुत सारी गालियां हैं। और अगर आप गालियों से कंफर्टेबल नहीं हो और बहुत ज्यादा क्रूड कॉन्टेंट से आप कंफर्टेबल नहीं हो, देन दिस इज नॉट फॉर यू। बट इफ यू आर अ फैन ऑफ सीरीज विच इज मिर्जापुर द सीरीज, देन दिस मूवी इज फॉर यू। इसके अलावा हनुमान अंश भी आप देख सकते हैं। जी हाँ, बहुत ही प्यारी मूवी है और आपको ये काफी अच्छी लगेगी। एंड ये डार्क हॉर्स की तरह जो है आगे बढ़ी है। मतलब लिटरली ये मूवी ऑलमोस्ट फ्लॉप हो गई थी, लेकिन फिर एकदम से वर्ड ऑफ माउथ ने इतना अच्छा काम किया कि ये आगे आगे आगे चलती गई। जी हाँ, इसी के साथ यहां पर दो और मूवीज हैं जो कि हॉलीवुड में लगी हुई हैं, अवेंजर्स एंड गेम इन कोर। जी हाँ, ये भी आप देख सकते हैं। और आपको तो पता ही है एवेंजर्स से रिलेटेड कुछ भी बुरा नहीं लगता, सब कुछ अच्छा लगता है। सो या गो फॉर इट, बिकॉज एवेंजर्स डूम डे जल्द ही रिलीज होने वाली है। और इसी के साथ रेजिडेंट ईविल, जी हाँ, अगर आप लोगों को हॉरर पसंद है, जी हाँ, एक्शन हॉरर साइफाई थ्रिलर ये सब कुछ पसंद है, देन गो फॉर रेजिडेंट ईविल। अच्छे वर्ड ऑफ माउथ है इसका भी। बताइए मुझे इसमें से कौन सी मूवी देखने के लिए आप जा रहे हैं। और इसी के साथ आगे की ओर बढ़ने का वक्त हो गया है। एक और खूबसूरत सा गाना हम आपको सुनाने वाले हैं, जो कि अगेन एक मूवी का है जो कि लगी हुई है थिएटर्स में, लेकिन ये इतनी हिट नहीं हुई, इसीलिए इसकी स्क्रीन जो है वो कम कर दी है। आप चेक कर सकते हैं अगर आपके आजू बाजू कि स्क्रीन्स पर थिएटर्स में ये लगी है तो दे हैवान, यानी कि हैवान, जो कि अक्षय कुमार और सैफ अली खान की मूवी है, आप देखिएगा जरूर। उसी का ये गाना है।

जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ वीकेंड है तो मुझे लगता है कुछ ऐसा तो आपको बोलना चाहिए, सुनाना चाहिए जिसको सुन के आपको अच्छा फील हो। तो लेट मी टेल यू समथिंग, कल ही की बात है, मैं सोशल मीडिया चला रही थी और सोशल मीडिया चलाते चलाते मेरी आंखों के सामने एक मीम आता है। उसमें लिखा होता है कि जो भी कहता है कल का काम आज कर लेना चाहिए वो गलत कहता है। कल का काम आज बिल्कुल नहीं करना चाहिए, कल का काम कल के लिए ही रखना चाहिए, क्योंकि क्या पता कल काम करना ही ना पड़े। एंड आई वाज लाइक या That's true। किसी ने हमें ये क्यों नहीं बताया, सबने हमें ये सिखाया कि कल का काम आज करो, कल करे सो आज करे सो अब। लेकिन किसी ने हमें ये नहीं बोला कि कल का काम आज करने की जरूरत ही नहीं, क्या पता कल का काम अगर कल के लिए छोड़ोगे तो कल काम करना ही ना पड़े वो। And I was like, yeah। See, I tell you, ये जो क्रिएटिविटी और ये क्रिएटिव जनरेशन जेंजीज की आई है ना, इसका कोई तोड़ नहीं है। जी ऐसे के साथ यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए, मिर्जापुर द मूवी का सांसों की माला, और ये गाना उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब के वक्त से, मतलब उन्होंने पहली बार गाया था, राहत फतेह अली खान साहब ने गाया, किस किस ने इसे ट्राई नहीं किया, और अब मधुर शर्मा की आवाज में आप सबके लिए।

जी हाँ, कल ही की बात है। और आप लोग बोलोगे कि निव्या शर्मा सब कुछ कल ही क्यों होता है, आज भी तो होना चाहिए। नहीं, पर ये सच में कल ही हुआ था। कल ही की बात है, मैं अपने एक कजन से बात कर रही थी। नाउ ये मेरा जो कजन है वो बहुत ही छोटा है, मतलब वो अभी स्कूल में है, और वो बहुत ही अच्छे से मुझे अपनी रूटीन के बारे में बता रहा था, क्योंकि उसके एग्जाम्स जो है वो आ रहे हैं, तो वो उनके बारे में भी बता रहा था। तो मैंने उससे पूछा कि तो तुम्हारी तैयारी हो गई है सारी? तो उसने कहा कि हाँ, एग्जाम की सारी तैयारी हो गई है, बस पढ़ना बाकी है। जी हाँ, जी हाँ। और वो तो जेंजी भी नहीं है, वो जेंजी के आगे वाली जनरेशन है। तो आप सोचिए कि इनका क्या होने वाला है। मतलब एग्जाम आ रहे हैं और मैं पूछ रही हूं कि सो तुम्हारी एग्जाम की तैयारी हो गई है? तो वो कह रहा हाँ, एग्जाम की सारी तैयारी हो गई है, बस पढ़ना अभी बाकी है। क्या होगा इस जनरेशन का? मतलब पढ़ाई तो करनी होती है एग्जाम के लिए, बाकी सब क्या तैयारी कर ली पढ़ने के अलावा? बट या आई टेल यू, दिस जनरेशन इज द बेस्ट। जी हाँ, व्हेन इट कम्स टू लाइक ऑफकोर्स रोस्टिंग के लिए, आप इनको अच्छा सब्जेक्ट जो है वो मान सकते हो रोस्टिंग के लिए, क्योंकि ये जो बातें करते हैं वो इतनी फनी होती है, पूछिए मत। ऑल दो लॉजिकल भी होती है, यू हैव टू से दैट। जी हाँ, यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से, जो कि अगेन कौन से नंबर का है, तीसरे नंबर के गाने पर हम पहुंच गए इस हफ्ते की टॉप 10 हॉट 10 की लिस्ट पर, और ये है ये प्रेम मोल लिया। जी हाँ, ये नई मूवी का गाना है जो कि जल्द ही आने वाली है, और ये है आयुष्मान और शर्वरी की मूवी का गाना।

0: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: Wow, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व, पर एड्रेस?
1: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
2: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे, रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
3: जी दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रसवानी 1701 AM। शो चल रहा है टॉप 10 हॉट 10 मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। दोस्तों, किसी महान इंसान ने सही ही कहा है कि हर किसी को एक्सप्लेनेशन मत दो। जी हाँ, हर किसी को एक्सप्लेनेशन मत दो। इंसान हो कस्टमर केयर नहीं। जी हाँ, मतलब इंसान हो कस्टमर केयर नहीं है, सबको एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। सो आगे से आपको जो भी कुछ भी कहे वहां पे बात छोड़ो और भाग जाओ वहां से। जी हाँ, कोई भी बेसिकली आपके पीस को खराब करने की कोशिश करे और कोई समझने की कोशिश ना कर रहा हो, ना समझ आ रहा हो सामने वाले को, और वो आपके पेशेंस को टेस्ट कर रहा हो, तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है भाई। सीधी सी बात है, कस्टमर केयर थोड़ी हो, एक इंसान हो, भाग जाओ वहां से। That is the best strategy। जी हाँ, इसी के साथ यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से, जो कि दूसरे नंबर का गाना है, और ये है समझो ना फ्रॉम द मूवी द विवान, जो कि रिलीज हो चुकी है थिएटर्स में, जैसे मैंने आपको बता चुका हूँ।

जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। जी हाँ, पता नहीं वक्त कहाँ चला जाता है। मतलब ऐसा लग रहा है अभी तो प्रोग्राम शुरू हुआ था और बस अभी खत्म हो गया। आप लोग बोलोगे कि नहीं नहीं निव्या शर्मा, हमको पूरी तरह से पता चला है कि प्रोग्राम कब शुरू हुआ था, कब खत्म हुआ है। और हम सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि अब तुम जाओ, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी चीजें करने के लिए और हमें वो करनी है। हमें हमारा वीकेंड अब अपने हिसाब से जीना है। चलिए ठीक है, अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो मैं अब आपको छोड़ने के लिए तैयार हूँ। बट डोंट वरी, मैं आपसे मिलने वाली हूं मंडे को, और वो भी इवनिंग वाइब में। मजेदार प्रोग्राम, मजेदार बातें, और दुनिया में क्या तूफानी चल रहा है सब कुछ हम आपको बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, खाते रहिए। और जो नंबर वन सॉन्ग है इस हफ्ते की टॉप 10 हॉट 10 की लिस्ट का, वो कोई और नहीं बल्कि वारूम फॉरएवर है। जी हाँ, वारूम फॉरएवर, जो कि अगेन मिर्जापुर द मूवी का है। सो बॉक्स ऑफिस पर रूल कर रही है मिर्जापुर द मूवी, और यहाँ इस लिस्ट में रूल कर रहा है ये गाना जो कि उसी मूवी का है। सो हर तरह से रूल कर रही है मूवी, और हर तरह से रूल कर रहे पंकज त्रिपाठी। जी हाँ, दैट्स ऑल आई कैन से। बाय, सी यू, टाटा, मिलते हैं अब आपसे मंडे को।

0: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज rani-creations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। ब्रीज सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। ब्रीज सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at royleendrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट, फ्री ऑफ चार्ज। रिंग करे प्रकाश मेनन को, फोन 3630-5438, 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660, 0415-952-660।

0: ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: Yes baby, but no compromise with quality and health. हम जाएंगे सिर्फ MC's Indian and Island Food.
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, quality spices, lentils, rice, flour और frozen sabzi from Fiji and India. Brisbane के best Indian butcher supplying farm fresh goat, lamb, chicken and duck और fresh local produce भी रखते हैं. साथ ही kitchenware and disposable plates की large range किसी भी function के लिए.
0: अरे वाह, intelligent हो गई हो.
1: MC's Indian and Island Food, serving Brisbane since 1999. Open 7 days. Find us on Facebook or visit website mcsfoods.com.au. 1 by 268 Kingston Road, Slacks Creek, phone number 3804-3818. That's 3804-3818.
2: क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हां। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: क्या बात है जुबिन, बैक टू बैक सुपर हिट्स, पर लड़की किसी में नहीं मिलती है। ये हाल सिर्फ वीडियो में ही है या रियल लाइफ में भी?
1: ये दिल ऐसी गलती नहीं करता।